हैं विविधता के बीच राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के और सुनते हैं।

पहली मार्च को रूबियो शनिवार से भारत की चार दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। यह उनकी पहली भारतीय यात्रा होगी। अमरीकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक

की आत्मा को जीवन देंगे। संग्रहालय का ये तीसरा एआई संचालक फीचर के होलो बॉक्स होगा। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्ले ऑफ में पहुंचने की संभावना बढ़ गई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद 6 घंटे की लक्ष्य हासिल कर लिया। लखनऊ सूर्यवंशी ने 93 रन की सांझी कमी उनके चेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा।

在这里温暖了阿加精神。阿加的讲了这个的称呼，上帝的名字不难听，那更多啥的本事

जो सुनेगा संगीत उस स्तर का दिमाग सुनने श्रृंखला ऐसी लागी लगन कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायक अमित गिलोता इस श्रृंखला की मांग तैयार सुनेगा प्रस्तुत करता मनीषा।

पहली लॉयड के सितारे का पास गायिका कमल बरोक से कमल शर्मा की बातचीत प्रस्तुति शकुंतला पंडित की। सुबह 11 बजे रात के 11 बजे से रंग

ताकि सुन सके मांगे समझा रंग जाएंगे और जी साथियों के लिए शॉपिंग सुनिएगा जयमाला शाम 7 बजे से शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनाएंगे आपको राग अनुराग। रात 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा प्रहसन खरीदा हुआ दुख लेखन शोभा रसोगी का निर्देशन दुर्गा महल।

उनके साथ राम को लौटा लाने के लिए वन जाने को उद्यत है। मंत्रियों को आदेश दिया गया है कि वे राज तिलक की सारी सामग्री वन में ले चले, जहाँ वशिष्ठ जी श्री राम का राज तिलक करेंगे। सबसे आगे अरुंधति तथा अग्निहोत्र की सामग्री के साथ मुनि वशिष्ठ रथ पर सवार होकर चले। उनके पीछे तेज और तपस्या के धनी ब्राह्मणों के दल अनेक सवारियों पर आसीन है। नगर के नगरियों के सुसज्जित रथों के साथ है राजों की पार्टी। सबको विदा करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई पैदल चल पाए। तो माता कौशल्या ने भरत को बुलाकर उनकी पलेगियां ली

0: से हम भक्ति रक्षी वर्षा से जीत रहे हैं और विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद है श्री अनूप जलोटा जी। नमस्कार। गंगा जमुना के तट पर लगातार आपके स्वर में और आपके पिताजी के गाय भजन गूंजते रहते हैं, लेकिन आज जगत में बहुत ही कोलाहल है। जो संस्कार भजनों के हले मिले वो नई पीढ़ी से नदारद है। ऐसे में भक्ति संगीत की ये रसधारा कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है आप हमें बताएं। और कबीर के अनगिनत भजन आपने गाए हैं, तो कबीर के भजन के जरिए आप क्या संदेश देंगे सभी श्रोताओं को?
1: कबीर ने जो जो लिखा है, जो देखा है वो लिखा है। उन्होंने हमेशा समाज की सच्चाइयों को अपने भजन के माध्यम से उतारा है। तो कबीर जैसे दार्शनिक दूसरे नहीं है, कबीर जैसा यथार्थ बात करने वाला कोई नहीं है, सच्ची बात करने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम कबीर को केवल कवि ही नहीं, समाज सुधारक भी मानते हैं। कुछ भजन हैं जो बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, चदरिया जी मेरी धीमी, जन्म तेरा बात ही जीत गयो, मत कर मोह तू, न जाने कितने भजन हैं। मैं आपको कबीरदास जी का एक भजन सुना।

इसके भी कुछ कारण होंगे क्यों बदल जाता है। उन्हीं कारणों को समझाया है कि मनुष्य क्यों भूल जाता है भगवान का नाम लेना। पार्थिव का रक्षित काम

बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा है। अरुण जी, आपकी भक्ति रचनाओं में जीवन दर्शन समाहित है और वो दर्शन जैसे मन में समा जाता है, तो इस वक्त कोई ऐसा भजन याद आ रहा है आपको, हमारे श्रोताओं

और गरीब की सुविधा में हम डूब गए थे, खोते गए थे, ऐसी लागी लगन। अनूप जलोटा से बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की ये थी नई कड़ी। अब आज की ये कड़ी

4002 तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात कि मैं अपने

ऋषिकेश मन्ना देव श्लोक में कदम और साथ में की आवाजों में सुरंग संगीत

la parmeshwara ma.

0: chiedi.
1: Quindi potete avere

कंट्री का लिखा ओपी मेयर का संगीत बद किया जाना आवाजे हैं वीजा दत्त और मोहम्मद रफी की फिल्म का नाम मिस्टर एंड मिसेज 55।

तरह से दुनिया में हरियाली बढ़ रही है, फूल बढ़ रहे हैं, पौधे बढ़ रहे हैं। और आजकल जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, इससे मधुमक्खियों के अस्तित्व पर खतरा बढ़ जाता चला जा रहा है। और इसका सीधा सीधा असर हमारे यहाँ फूलों और पौधों की विविधता पर भी पड़ रहा है। आप अक्सर ही देखेंगे कि कॉलोनियों में या ऊंची ऊंची इमारतों में मधुमक्खियों के छत्ते पड़ जाते हैं और उन्हें हटाने के लिए लोगों को बुलवाया जाता है। उसके बाद आप राहत की सांस लेते हैं कि हमने मधुमक्खियों को हटा लिया, हमें सुकून मिल गया। पर जरा ये सोचिए कि ये मधुमक्खियाँ पर्यावरण के संतुलन के लिए कितनी जरूरी थी। उनकी जगहों पर आपने कब्जा कर लिया और इसलिए मधुमक्खियाँ आपके

हम आपको रोज किसी न किसी मुद्दे पर जागरूक करते हैं। आज मधुमक्खी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जरा सोचिए कि मधुमक्खियाँ फूलों का रस ग्रहण करती है और इसे शहद में बदल देती है। यानी मधुमक्खियों का जीवन

रेडियो द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेलियां।

हमारा टेलीफोन नंबर 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024
जो भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली भवन सभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्र लोग सुखिंदर सिंह की आवाज में लापता लेडी सिंह सरैना जीवनिधि शर्मा ने लिखा है।

0: सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता, अल्टीमेट गोल कम से कम

जम्बिया आज के दिन सन 1900 में आपका जन्म उत्तराखंड के कौसानी नामक स्थान में हुआ। बचपन पहाड़ों की प्राकृतिक सुषमा के बीच बीता, अतः उस सौंदर्य और कोमल भावनाओं का निदर्शन आपके साथ में सहज रूप से विद्यमान है। सन 1964 में आपको हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके काव्य संग्रह चिदम्बरा के लिए दिया गया। भारत सरकार ने

तिरसी गांव में रहने लगा। तब गिरीश नाटक मंडलियों के संपर्क में आए। वहां के लोकनाट्य यक्षगान के तो वे जबरदस्त प्रशंसक थे। गिरीश जब 14 वर्ष के थे तब उनका परिवार धारवाड़ में आ बसा, जहां उन्होंने बीए तक की पढ़ाई पूरी की और फिर वे इंग्लैंड चले गए। ऑक्सफोर्ड के मैगडलिन शहर में रहकर उन्होंने फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स विषयों को लेकर एमए की डिग्री हासिल की।

शुरू किया था। ये वो समय था जब कन्नड़ साहित्य पर यूरोपीय साहित्य की छाप देखने को मिलती थी। कमोबेश सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य की स्थिति यही थी। श्री राजगोपालाचारी द्वारा रचित महाभारत का संस्करण गिरीश कर्नाड ने पढ़ा और उन्होंने अनुभव किया कि महाभारत के पात्र उनके मस्तिष्क में विचरण कर रहे हैं और उन पात्रों के संवाद कानों में गूंज रहे हैं। आगे एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि मैं तो मात्र लेखनी हूँ, एक एक कर सभी पात्र मेरे कानों में बोलते गए और मैं लिखता गया। नाटक तैयार हुआ गया था। पांडवों के पूर्वज जयाति पर केंद्रित ये नाटक बहुत सफल हुआ और अन्य भाषाओं में इसके अनुवाद भी हुए। 1964 में गिरीश कर्नाड ने अपना अगला नाटक लिखा तुगलक। 14वीं सदी के दिल्ली के उस सुल्तान की कहानी के माध्यम से तत्कालीन प्रशासन के महत्वाकांक्षी आदर्शवाद का बुलबुला बड़ी सहजता से दर्शाया गया था इस नाटक में। गिरीश कर्नाड को एक नजरिया मिल गया था, कहानी के स्रोत इतिहास या पुराणों से लेना और समकालीन विषयों तथा आधुनिक मानव की अस्तित्व के लिए चल रही लड़ाई के साथ उसे जोड़ देना। मात्र 26 वर्ष की आयु में

1970 में ही गिरीश कर्नाड का पदार्पण हो चुका था फिल्म संस्कार के पटकथा लेखक के रूप में। इस फिल्म को राष्ट्रपति के स्वर्ण कमल से सम्मानित किया गया था। निर्देशक के रूप में गिरीश कर्नाड की पहली फिल्म थी वंश वृक्ष, जिसके लिए राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वोत्कृष्ट निर्देशक का पुरस्कार उन्होंने साझा किया बी.वी. कारंत के साथ। आगे कई कन्नड़ फिल्मों का उन्होंने निर्देशन किया। जहां तक हिंदी फिल्मों की बात है, 1977 में गिरीश कर्नाड ने जिस फिल्म का निर्देशन किया वो फिल्म थी गोधूली, और 1984 में शशि कपूर निर्मित फिल्म

के साथ साथ गिरी कर्नाड के नाम का डंका अपने के क्षेत्र में भी बजने लगा। तब्बलियु नीनदे मगने ओंदनंदु कलदल्ली तेलुगु कडू कोन्नूरु हेगदिच्चि, ये हैं कुछ प्रमुख कन्नड़ फिल्मों के नाम जिनमें गिरीश कर्नाड ने अभिनय किया है। उनके अभिनय से सजी हिंदी फिल्मों की तो एक लंबी फहरिस्त है, जादू का शंख, निशान, मंथन, स्वामी, जीवन मुक्त, संपर्क, रत्नदीप, बेकसूर, आशा, मनपसंद, अपने पर आए, क्षमा, तेरी कसम, आनंद भैरवी, एक बार चले आओ, तराना, जमाना, मेरी जंग, सुरसंगम, सूत्रधार, आकर्षण, मिल गई मंजिल मुझे, चैतन्य, ब्रह्म, अंतर्नाद, गुना, प्राणदाता, आतंक, चाइना गेट, AK-47, पुकार, इकबाल, जोर, 8x10 तस्वीर, आशाएं, लाइफ गोज ऑन, टाइगर, शिवाय, शॉक इंडस्ट्र और टाइगर जिंदा है। फिल्म सुरसंगम, जो तेलुगु में शंकराभरणम के नाम से बनी थी, इसके नायक पंडित शिवशंकर शास्त्री की भूमिका में थे गिरीश कर्नाड। वो जानदार

Thank you.

Okay.

1990 तक गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित नागमंडल, अग्निमत्तुमाले और कालेदन, इन नाटकों को अनुवादित रूप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपार सफलता मिली। भाषा साहित्य की सेवा के लिए गिरीश कर्नाड को 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1974 में पद्मश्री पुरस्कार, 1992 में पद्म भूषण पुरस्कार से गौरवान्वित किया गया। 1992 में ही उन्हें कन्नड़ साहित्य परिषद का पुरस्कार प्रदान किया गया। 1994 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। 1998 में कालिदास सम्मान तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से गिरीश कर्नाड को सम्मानित किया गया। फिल्मों में उनके योगदान को अन्यान्य पुरस्कारों से प्रतिष्ठा मिली। 1971 में बेस्ट डायरेक्टर फिल्म वंश वृक्ष के लिए, 1977 में बेस्ट फीचर फिल्म इन कन्नड़ा डब्ल्यू नीलदे मग्ने के लिए, फिल्म भूमिका की पटकथा के लिए, 1978 में

Thank you.

ही कार्यक्रम सुन चाहिए अभी भी समाप्त होता है। एफएम के 1.8 MHz पर भी आकाशवाणी जमशेदपुर का वृद्धा केंद्र है। आपको यह कार्यक्रम फिल्म संगीत थोड़ी ही देर में।

Okay.

John Hayes, ¿no? De hecho, es el mundo, y podría tratarse en la

somebody who's come up with a

जाने सीधे हमारे सिर के ऊपर ही दबा रखी है, जिसके बाहर चलने में डर लगता है। ऐसे में जो लोग ट्रैफिक में फंसे हैं या ऑफिस के काम से बाहर हैं, आप सबों को मेरा सलाम है। इतनी गर्मी में काम करने का मन भी नहीं करता, लेकिन बिना काम एक

की नन्ही सी जान हमारे अस्तित्व की महान वैज्ञानिक सर्वोच्च में एक बार कहा था कि जिस धरती के

की जगह से मधुमक्खियों की संख्या तेजी से घट रही है। छोटे छोटे बदलाव ला कर इन्हें बचा सकते हैं। मतलब जिन बालकनी या गार्डन में पौधे लगाए वो भी गेंदा सूरजमुखी या तुलसी जैसे फूलों वाले पौधे लगाए जहाँ की उन्हें भोजन मिल सके। घरेलू पौधों में केमिकल वाले कीटनाशकों की जगह जैविक खाद का इस्तेमाल करें। गर्मी के इस मौसम में अपनी छत या बालकनी पर एक छोटे बर्तन में पानी और कुछ कंकड़ पत्थर उसमें डालकर रखें ताकि मधुमक्खियाँ बिना डूबे पानी पी सके। तो दोस्तों आज इस विश्व मधुमक्खी दिवस पर चलिए छोटा

बारे से कहते हैं कि भाई पूरा एक रूप से देख लेना या गति चलाते हुए चीजों की तरफ नजर डालते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब चीजों के बीच की कौन सी जादुई ताकत काम कर रही है? जी हाँ, वो ताकत है माप यानी मेजरमेंट की। और आज यानी 20 मई को दुनिया भर में इसी माप का जश्न मनाया जा रहा है, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस के रूप में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मेट्रोलॉजी क्या है, मेट्रो ट्रेंड है? बिल्कुल नहीं, मेट्रोलॉजी का मतलब है माप विज्ञान यानी कि साइंस ऑफ मेजरमेंट।

होना आपकी जान बचाता है। आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज से लेकर स्पेस में जाने वाले सैटेलाइट तक सब कुछ इसी सटीक माप पर टिके हैं। हर साल इस खास दिन की एक थीम होती है जो हमें ये बताती है कि कैसे सही माप हमारी दुनिया को बेहतर, सुरक्षित और टिकाऊ बना रही है। मौसम का बदलना हो या पर्यावरण में कार्बन का स्तर नापना हो, मेट्रोलॉजी हर जगह हमारा मार्गदर्शन कर रही है। तो दोस्तों, आज जब आप अपनी चाय में एक चम्मच चीनी डालें ना, या फिर अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाएं, तो मन ही मन उन वैज्ञानिकों को जरूर से धन्यवाद कहिएगा जिन्होंने हमारे जीवन को इतना सटीक और आसान बनाया।

phone number है 0607-296-0445। हेलो, आपकी फरमाइश संजीव वही जो आप चाहें।

गया, इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण और शाही प्रसाद के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और क्योंकि आप हमें रेडियो पर सुन रहे हैं, तो आपको एक बेहद दिलचस्प बात बताते चले कि हम आज जिसे आकाशवाणी कहते हैं ना, उन नाम का सुझाव देने वाले भी सुमित्रानंदन पंत थे। वे लंबे समय तक ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े रहे, तो हुआ ना हमारा और उनका अटूट रिश्ता। दोस्तों, पंत जी भले ही 28 दिसंबर 1977 को इस नष्ट संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन अपनी कविताओं के साथ आज भी हमारे बीच आना था। हमें इस महान विभूति को नमन करें।

within the church, which is known as the Ascension of Muhammad, to the idea that I am a different idea for both of us on ground core is negative study. It may not be worth it. We have five feet, 24 days to Mahal, so then to that in any. It's pretty bizarre, I got dressed up at the car. This is the best way to get to the end of the day. All the students are good. Thank you, इतने कोई भी हिंदुस्तान को जगा दिया दोस्तों जब भी हम भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के मौके पर सबसे आक्रामक तौर को याद करते हैं तो एक नारा हवा में गूंज जाता है लाल बाल पाल लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक और नितिन चंद्रपाल ये वे थे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की ₹7 नवंबर 1857 को हबीबगंज जो बांग्लादेश में है वहाँ जन्मे नितिन चंद्रपाल को भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक कहा जाता है दूरदर्शी व्यक्ति थे जब कांग्रेस के बीच नरम दल का प्रभाव था और याचिकाओं में विश्वास किया जाता था तब नितिन चंद्रपाल ने कहा था कि याचिकाओं की आजादी नहीं मिलती आजादी छीन नहीं पड़ती है उन्होंने लोकमान्य तिलक और गर्म दस्ती नींद रखी जिसने युवाओं की रगों में देशभक्ति का उबलता हुआ

उसने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के कमर तोड़ दी। दोस्तों आज विपिन चंद्रपाल हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका यह वह स्वदेशी का मंत्र आत्मनिर्भरता की सोच और देश के लिए सर्वस्व निस्तावर कर देने का उनका जज्बा आज के हर भारतीय के लिए जिंदा है। हम सब की ओर से उन्हें

से मिलने से पहले आपको आज के मौसम की जानकारी देते हैं। अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कोल्हान के विभिन्न क्षेत्रों में दिन में धूप होगी, शाम में बादल छा।

ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से देखते हैं। रोम से सुपर्णा भाटिया।

पूछ में आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का टेक्स्ट जारी किया गया है। इस इबारत को पढ़कर आपको अंदाजा लग गया होगा कि आज के गाने कौन कौन से हो सकते हैं। जब कमेंट बॉक्स देखा तो बहुत सारे लोगों के कमेंट है जिसमें आप

से बहुत सारे अलग अलग शब्द अलग अलग गानों की तरफ इशारा कर देते हैं, पर एक शब्द ऐसा है जो केवल एक ही गाने की तरफ इशारा कर रहा है। दरअसल गुलमोहर शब्द पर

कि गुलमोहर के लाल लाल फूल खिल गए। ये दूसरा गीत गुलमोहर शब्द पर आधारित है। ये किसी श्रोता के पिताजी ने उनको ये सजेशन दिया है। इसके अलावा कई श्रोता है जो अपनी बातें कह रहे हैं। जैसे एक श्रोता कहते हैं कि आज पंची नदिया पवन के झोंके ये गाना जरूर सुनाई देगा। एक श्रोता लिखती है कि मेरे घर से किसी दूरी पर एक नहीं दो गुलमोहर के पेड़ हैं, एक बगीचे में और एक सड़क के किनारे, सच मानो जैसे गले लगने के लिए तैयार है। आज सुबह देखे एक छोटा सा पंछी गुलमोहर पर अठेलिया कर रहा था। इधर दूसरी की गर्मी जैसे जैसे अपने शबाब पर होती है, दो ऐसे पौधे या पेड़ है जो ज्यादा ही से लुकते हैं, एक तो गुलमोहर और दूसरा गुलाबी रंग का जो बोगनविलिया होता है। यूं लगता है जैसे कड़ी धूप का उन पर कोई असर नहीं है, मानो जिंदगी में हमें ये सबक सिखा रहे हो कि धूप कितनी भी तेज हो आपको अपनी चमक नहीं छोड़ना चाहिए, आपको अपनी मुस्कान नहीं छोड़नी चाहिए। चलिए कुछ और श्रोताओं से कमेंट पढ़ते हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है, इतनी शक्ति हमें देना दाता ये गाना उसकी साइकिल में आ सकता है। इसके अलावा मन क्यों बहका आधी रात को ये भी आ सकता है। एक श्रोता ऐसे जिन्होंने बिल्कुल लंबी सी रिसर्च कर डाली है, फूलों की महक

हो या बाकी बड़े शहरों से हो, तो उनसे गलत तो

ため、目標に沸くことは、3つの陸馬、そして実際、近づかせるです。私に対応して、実際、根拠を覚えた

काफी बढ़िया है।

0: कहना है कि गर्मी होने पर भी इनके यहाँ गुड़हल और गुलाब में बहुत फूल आ रहे हैं। और इसके अलावा अमलतास के पेड़ बहुत सारे श्रोताओं के शहरों में और उनके मोहल्लों में है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे घर पर आंसू पालक, जासूद, बारामासी, गिलोय, तुलसी और ग्रीन टी लगे हुए हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हमारे यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ गुलमोहर बहुत ज्यादा खिला हुआ है। एक और श्रोता छत्रपति संभाजी नगर से लिख रहे हैं कि हमारे शहर में बहुत गुलमोहर है। एक और श्रोता है जिनके आस पास गुलमोहर और अमलतास के बहुत सारे पेड़ हैं और अमलतास के पीले पीले फूल और गुलमोहर के लाल लाल फूल बहुत सुंदर दिख रहे हैं।
1: मैं अगले वर्ष कंपनी को ऐसे से मैं सभी कंपनी को फैन को इन्वाइट करता हूँ। हाय सर, आई कैन चैट विद यू फॉर एक मिनट को शाम को 7 बजे तक ऑन अस में द प्रैक्टिकल क्लास फॉर टिकट्स डाउनलोड इशू दैट बाय द मेल।
0: इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे दोस्त के घर में बहुत सारे गुलमोहर के पेड़ हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि हमारे यहाँ सड़क के दोनों तरफ अमलतास के वृक्ष लगे हैं और इनके पत्ते इस ऋतु में भर जाते हैं और इसके पीले वृक्षों से वृक्ष पीले फूलों से वृक्ष सज जाता है, बड़ा ही सुंदर दिखता है। कितने श्रोताओं ने गुलमोहर, अमलतास, सेवंती, चंपा, इन तमाम फूलों की बातें लिखी है। फूल कितने दिल के हमारे करीब होते हैं। अब आगे एक गाना आएगा जो फौरन नहीं आएगा बल्कि इसके बाद दूसरे या तीसरे नंबर पर हम

नदी बहती है, एक छोटा ऐसी है जो गंगा नदी के किनारे रहती है और माइके गई तो सोन नदी के किनारे और पटना शहर में गंगा नदी के किनारे घूमना बड़ा सुखद होता है, ये कह रही है। एक और छोटा है जो कहते हैं कि मैं नागपुर में रहता हूँ और कन्हान नदी क्योंकि 15 किलोमीटर दूर है इससे बहुत दूर लगती है और वहाँ जाना मुश्किल होता है। एक छोटा ऐसा है जिनकी घर से 100 मीटर की दूरी पर महानदी है और बैराज से शाम का नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है। एक और छोटा है माघू माल की गुड़हल और बारामती के पेड़ उन्होंने लगा रखे हैं। एक छोटा ऐसे हैं जो कहते हैं कि अमलतास का पेड़ उनके घर के सामने वाले गार्डन में है और चाहे कितनी भी धूप हो इस पेड़ के नीचे खड़े हो जाए तो बहुत ही ठंडी हवा मिलती है। बाहरी अक्सर इसके नीचे लकड़ी से राह पाने के लिए निजात पाने के लिए खड़े हो जाते हैं। और छोटा है तो लिखिए गुलमोहर को प्लेन ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है और शानदार है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और बहुत इतने कमेंट्स हैं कि मुझे लग रहा है कि ये सारे कमेंट्स पढ़ने में तो बहुत

चुका है जो दक्षिण के हमारे विशाखापट्टनम में नदी तो नहीं है लेकिन सागर का किनारा है जहाँ जाकर अच्छा लगता है। आप में से कौन कौन से ऐसे श्रोता है जिन्हें समुन्दर का किनारा बहुत पसंद है? अगर समुन्दर नहीं देखा तो वो भी बताइए। कौन कौन से ऐसे श्रोता है जो जिंदगी में अभी समुन्दर देखने का इंतजार कर रहे हैं? कौन कौन से ऐसे श्रोता है जो समुन्दर के किनारे जा

और सोचा है जिन्होंने मुंबई में गेहूं चौपाटी कई बातें की और शाम के समय दूसरे सूरज को देखकर अपनी सुन कर देखा है। इसके अलावा एक और सोचा है जिन्होंने पूरी गोपालपुर चांदीपुर और पारादीप के समुद्र पर देखे हैं और बंगाल की खाड़ी के पास के इलाके में वो रहते हैं। एक और सोचा जिन्होंने लिखा है कि मुंबई पंजी रामेश्वरम और कन्याकुमारी इन तमाम जगहों पर जाकर देखा है समुंदर का किनारा। एक और सोचा कहते हैं कि 2003 के आसपास जो मुंबई में रहते थे और जुहू और हाजी अली के किनारों पर जाने का मौका उन्हें मिला है। और इसके अलावा एक सोचा लिखते हैं कि भारत में बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए कई राज्य हैं और कुछ इलाका अरब सागर से जुड़ा है, कुछ हिंद महासागर से जुड़ा हुआ इलाका भी है। फूलों के बारे में भी लगातार कमी आ रहे हैं। लाल गुलमोहर के अलावा जामुनी रंग के गुलमोहर जिसे जकरांडा एवं नीला गुलमोहर कहते हैं बसंत ऋतु में मार्च अप्रैल के महीने में देश में बहुत फूल आते हैं। भारत से अमरावती के मेल घाट में तो बहुत ही आकर्षक गुलमोहर होते हैं। एक छोटा है जो कहते हैं कि करवान नदी हमारे शहर के पास बहती है। और इसके अलावा एक और छोटा है जो कहते हैं कि हम तो भोपाल के हैं, चारों तरफ तालाब जंगल और पहाड़ है, गुलमोहर से गोल्डन शावर की बहार है। और दिल्ली के एक छोटा कहते हैं कि यमुना नदी है तो सही लेकिन प्रयागराज जाते हैं और संगम में स्नान करते हैं। एक और श्रोता भेड़ाघाट को याद कर रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, इतने प्यार से आप नदियों को सागर को सबको याद कर रहे हैं। और अब सिटी टेक्स की हमने बहुत अलग अलग तरह के गानों का जिक्र किया था तो अब ये गाना

छोटा सा बड़ा प्यार कभी पाया है जिन्होंने दिखाए थे उन्हें जिंदगी में अभी तक समंदर नहीं दिखा और उन्हें समंदर देखने का इंतजार है। इसके अलावा कई शोक ऐसे हैं जिन्होंने समंदर देखा। जरा सोचिए कि ये पेड़ पौधे, ये नदियाँ, ये समंदर, ये खाड़ियाँ, ये गुलमोहर, ये अमलतास, ये तमाम फूल पौधे नहीं होते।

comme tout à l'heure. Bonne vie de celui-là, Vinito, Rispino, Lito, Mekka, Krabab, Abnaji, Aka. इतने सारे सेवाओं के समुद्र और नदी पर कमेंटारियों के आज मुझे अलग से बैठकर ये सारे कमेंट पढ़ लेंगे। छोटा लिखते हैं कि उड़ीसा में जो दो नदियों के बीच बसे हैं, महानदी और महानदी से एक शाखा निकलती है जिसे थोड़ी नदी कहते हैं। दोनों जो नदियों के बीच में सतह बसा है, जैसे कि चारों तरफ पुल है और सोमनाथ, मुंबई, गोवा, तिरुवनंतपुरम, रामेश्वरम, विशाखापट्टनम और बंगाल का समुद्र देखा, कितने सौभाग्यशाली हैं हमारे ये श्रोता कि उन्होंने चारों तरफ जो भारत में समुद्र है वो सभी देख रहे हैं। इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि भारतीय परिवार है और हम अपना चतुर्थ यहीं से पैदा करते हैं। इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं मैं अपने पति से, एक श्रोता है जो अपनी बेटियों से अपने सुख दुख पैदा करती है। बहुत शुक्रिया इन तमाम बातों के लिए।

पसंदीदा फूलों के नाम लिए हैं, किसी को गुलाब पसंद है, किसी को हरसिंगार बहुत पसंद आते हैं। एक छोटा लिख रहे हैं कि हरसिंगार के फूल जब झड़ते हैं तो लगता है मानो जमीन पर तारे निकल आए हैं। इसके अलावा एक छोटा लिखते हैं कि हमारे घर के आसपास गोरैया बहुत नजर आती है, और इसके अलावा बहुत सारे तोते और चिड़ियाएं आती हैं, कबूतर बहुत ज्यादा आते हैं, आजकल हम दाना पानी रखते हैं। एक छोटा लिखते हैं कि बहुत छोटी सी प्यारी सी चिड़िया इनके घर में बहुत बार आती है। एक और छोटा है जो लिखते हैं कि तोते कावर कोयल कबूतर और कुछ अज्ञात पंछी नजर आते हैं। और इसके अलावा एक और छोटा है जो लिखते हैं कि इतने सारे पंछी सभी श्रोताओं ने बहुत सारे अलग अलग पंछियों के नाम लिए हैं, और अब क्योंकि कार्यक्रम से जाने का वक्त आ गया है, लेकिन एक गाने का सुराग मैंने अपनी आज की इबारत में रख छोड़ा था, वो अच्छा आखिरी गाना है। आज का सफर कार्यक्रम

पाते हैं, लेकिन आज का दिन पूरी दुनिया में विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मधुमक्खियों का दिन मतलब इसका क्या मतलब है? आपको बताता हूँ, और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मधुमक्खियाँ परागण करती हैं और ये मधुमक्खियाँ हमारे इकोसिस्टम को बनाए रखने की कोशिश करती हैं। सन 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने 20 मई को मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित किया था और ये दिन मनाया जाता है मधुमक्खी पालन के जन्मदाता एंटोन गालिसा की जयंती के मौके पर। मधुमक्खियों को बड़ी तेजी से खत्म किया जा रहा है और इससे उनके अस्तित्व पर खतरा बन रहा है। जाहिर है मधुमक्खियां नहीं होगी तो फूल,

की दुनिया में हरियाली बढ़ रही है, फूल बढ़ रहे हैं, पौधे बढ़ रहे हैं, पर आजकल जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उससे मधुमक्खियों के अस्तित्व पर खतरा बढ़ाता चला जा रहा है और इसका सीधा सीधा असर हमारे यहाँ फूलों और पौधों की विविधता पर भी पड़ रहा है। आप अक्सर ही देखेंगे कि कॉलोनियों में या ऊंची ऊंची इमारतों में मधुमक्खियों के छत्ते पड़ जाते हैं और उन्हें हटाने के लिए लोगों को बुलवाया जाता है। उसके बाद आप राहत की सांस लेते हैं कि हमने मधुमक्खियों को हटा लिया, हमें सुकून मिल गया। पर जरा ये सोचिए कि ये मधुमक्खियाँ पर्यावरण के संतुलन के लिए कितनी जरूरी थी। उनकी जगहों पर आपने कब्जा कर लिया और इसलिए मधुमक्खियाँ

आपको रोज किसी न किसी मुद्दे पर जागरूक करते हैं। आज मधुमक्खी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जरा सोचिए कि मधुमक्खियाँ फूलों का रस ग्रहण करती है और उसे शहद में बदल देती है। यानी मधुमक्खियों का जीवन संसार में मिठास बढ़ाने को समर्पित है। हम मधुमक्खियों से मीठा बोलना सीख सकते हैं। हम मधुमक्खियों से संसार का भला करना सीख सकते हैं। हम मधुमक्खियों से ये सीख सकते हैं कि दुनिया में बोलने की मिठास है, लेकिन इसको मीठे बोलना कई बार इनके पीछे भी कुछ बदमाशियां

सेवा देश की करीबी धड़कन थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जो हम आकाशवाणी के

a veces ya ni

Lucia

Abraham. So, when we have 4 minutes to send it to

प्रति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रही।

se ne vai.

0: Monday can you do it? I'm meeting with him.
1: वो अच्छी बात है ना, जितना आप पैदल चलेंगे उतना अच्छा।
0: वो अच्छी बात

Bye.

0: भावना। अच्छा, भाषाओं से जुड़े संस्कार मैं आप बताना चाहती हूँ कि अपनी अपनी भाषाओं के बारे में हमारे श्रोता हमसे बात करें कि वो किस भाषा को जानते हैं, कितनी भाषाओं की ज्ञाता है। तो फटाफट लिखिए, हमारे सरकार से इससे मनोरोध करते हैं कि जो भाषाओं से जुड़ा संस्कार है इस पर लिखने के साथ साथ ये भी बताइए आपने अब तक कितनी भाषा सीखी है।
1: बिल्कुल, और हम बात करेंगे जरा जिस सारियों का संसार और सारियों का जो विषय है उसमें हम आज हम लेकर आए हैं टनटोल का।
0: क्या बात है, क्या बात है। पर आज मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आप मेरे लिए टनटोल साड़ी लेकर
1: आएंगे। साड़ी तो मैं खैर नहीं लेकर आ पाई हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत सारी मिठाइयाँ मिल जाएंगी।
0: बिल्कुल, वो हमें मिल भी गई है। और शुद्ध हमारा विचार है आपके लिए आज सद्भावना पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि सद्भावना कहने के बहुत सामान्य से भावना होनी चाहिए, लेकिन गहरी रहकर बहुत गहराई में जाकर आप इस पर अपने विचार लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि आपके भीतर कितनी सद्भावना है दूसरों के प्रति। हम लिख तो देते हैं आपकी बड़ी बड़ी बातें कि सद्भावना होनी चाहिए, बहुत जरूरी है जीवन में, लेकिन जब हमारा मौका मिलता है तो पता चलता है कि हमारे अंदर तो सद्भावना है ही नहीं, सद्भावना भी नहीं है। विचार लिखे
1: और जो चीजें लिखी हुई पहले जो उसमें
0: उस पर आप जाइए कि सद्भावना के विषय में क्या लिखा गया है ये बताइएगा कि आप सद्भावना को लेकर क्या सोचते हैं। आपके जीवन में, आपके विचारों में, आपके व्यवहार में कितनी सद्भावना है, या सामने जो आपके लोग आते हैं उससे आपको सद्भावना में
1: देखना है। तो हम

0: हमारे शिक्षा में पूरा पृथ्वी का स्वच्छ बनाने के लिए और हमारे लिए फ्रेश होता है। वो लिखते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस और मधुमक्खियों के बारे में खास बातें कुछ बताने हैं वो कि दुनिया की एक तिहाई खाद्य फसलें पूरी तरह से मधुमक्खियों जैसे पराग जो परागकों के ऊपर निर्भर है, यानी कि वो जो मधुमक्खियां हैं वो उसको पराग को जब लेती हैं और बिखेरती हैं उससे ही निर्भर करता है। यदि ये ना हो तो हमारे भोजन के पेट से अधिकांश फल सब्जियां और मेवे गायब हो जाएंगे। मधुमक्खियां आपस में बात करने या भोजन के स्रोत का पता लगाने के लिए एक विशेष प्रकार का वेगल डांस यानी कि नृत्य करती है। एक पाउंड लगभग आधा किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों के पूरे झुंड को लगभग 20 लाख फूलों का दौरा करना पड़ता है और अंत में मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं, जो बड़ी मुख्य आंखें और सिर के बीच बीच में 3 छोटी आंखें, जिसमें 20 लाख बच्चे
1: शुद्ध जैसे है वो मिलता है,
0: बोंद नहीं गिराना चाहिए,
1: बिल्कुल नहीं गिराना चाहिए। और हम सभी को ये भी पता होना चाहिए कि मधुमक्खियाँ उन पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिन पर हम भोजन के लिए निर्भर है। जैसे कि सदियों से मधुमक्खियों की पृथ्वी पर सबसे मेहनती जीवों में गिनी जाती है और वो मनुष्य को पौधों को जैसा कि अभी तुमने बताया हमारे लिए पर्यावरण को लाभ भी पहुँचाती रही है और एक फूल से दूसरे फूल तक वो पराग को ले जाती है और प्रचुर मात्रा में फल मेवा और बीज भी वो पैक करती है।
0: जी हमारे ये छोटा घर कितने ही कितने जानकार है, मतलब जिसकी अच्छी जगह से उन्होंने इस बात को लिखा हुआ है,
1: सही कहा उन्होंने। और बल्कि उनकी जो विविधता है और गुणवत्ता में भी सुधार लाते हैं जिससे खाद्य सुरक्षा और पोषण में योगदान होता है, वो पृथ्वी पर जीवन जैसे रहने के लिए जरूरी भी होता है। और शहद के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो शहद तो उत्पादक होने के अलावा मधुमक्खियाँ पौधों के निषेचन में मदद करती है और अनगिनत प्रजातियों के प्रजनन को वो सुनिश्चित भी करती है। फलों की और सब्जियों से लेकर फूलों और पेड़ों तक हमारे द्वारा जो खाए जाने वाले कितने ही खाद्य पदार्थ हैं वो परागण के लिए मधुमक्खियों पर ही निर्भर है। जलवायु के शुरू में बताया गया
0: और मधुमक्खियों के बिना हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होगा, जिससे जैव विविधता में कमी आएगी और मनुष्यों और वन्य जीवों दोनों के लिए खाद्य सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ सकती है।

0: 2024 में 32 मार्च दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग का उद्देश्य जो है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मधुमक्खियों और अन्य परागकणों की भूमिका को स्वीकार करना है। तो अमेरिका में पहली बार दिवस मनाया गया और ये पहले मधुमक्खी पालकों, शिक्षकों और शहद प्रेमियों द्वारा मधुमक्खियों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी और उनका लक्ष्य मधुमक्खियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करना था और उनके संरक्षण को उनके महत्व पर जोर देना भी था।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है हमारे, ये देखते हैं कि 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार दुनिया की लगभग 33% खाद्य फसलें और 90% जंगली फूलों वाले पौधे पूरी तरह या आंशिक रूप से परागकों पर निर्भर करते हैं। मधुमक्खियाँ इस पारिस्थितिकी तंत्र को स्वच्छ रखने का सबसे बड़ा जरिया है।
0: बिल्कुल सही कहा। और देखिए बहुत सारी जानकारी जो हम जुटा के लाए थे वही हमारे श्रोता भी बता रहे हैं काफी अच्छा मधुमक्खियों के बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज दिवस हम मना रहे हैं ना आरती, ये मधुमक्खियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने का एक शानदार अवसर है और मधुमक्खियों को प्रचुर मात्रा में पराग उपलब्ध कराने के लिए मधुमक्खी अनुकूल फूल और जड़ी बूटियाँ हमें लगाने के लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वो अपना कार्य कर सके। अपने बगीचों की अगर हम बात करें उनके पौधों पर कीटनाशकों और रसायनों का उपयोग करने से हमें बचना भी चाहिए क्योंकि मधुमक्खी और अन्य जो लाभकारी कीड़े हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। और साथ ही मधुमक्खी उत्पाद खरीद कर स्थानीय मधुमक्खी पालकों को हम बढ़ावा दे सकते हैं। और इस बार का जो मुख्य विषय रखा गया है वो है प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खियाँ हम सभी का पोषण करती है।
1: बिल्कुल, हर बार एक नया विषय के साथ में आते हैं तो इस बार तो मुझे ये है। और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि फूलों और फूल और फलों के फलीकरण के लिए मधुमक्खी वाहक का काम करती है, इसलिए मधुमक्खी का अशुद्ध बना रहना इस सृष्टि के लिए बेहद जरूरी है। पेड़ों की डाली के अलावा किसी घर की छत के नीचे छत्ता बना रही मधुमक्खियों से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन जब तक आप उसे छेड़ेंगे नहीं
0: तब तक वो करेगी बिल्कुल,
1: और कि वो आपको दस न ले हम मतलब उसके पंजा लगा दें आपको। हम भी यही कह रहे हैं अगर उसे आप छेड़ेंगे नहीं तो अगर आप उसे छेड़ेंगे तो हमें छोड़ेगी नहीं। जिस पेड़ की डाली पर तेरा छका हो उस डाली के पास से गुजरना नहीं, उन्होंने बड़े तरीके से बिल्कुल
0: सही कहा है।
1: और कहते हैं कि 3 साल पहले हमारे घर के OTS के डालियों पर छका बनाया था, अब इस साल हमारे घर अमरूद के पेड़ के नीचे कपड़े सुखाने के तार पर एक कोने में एक महीन पहले छका बनाना शुरू किया जो आज काफी बड़ा हो गया है और कुछ दिनों बाद बरसात के रूप में अपने आप उड़ जाएंगे। ना हम उसे छेड़ते हैं ना वो हमें

0: कल्चर से जुड़ी चीजें हैं जहाँ पर हम बहुत सारी बातों से बहुत सारी चीजों से गुणों से जुड़ पाते हैं और उनमें एक है हमारा साड़ियों का चिंता बहुत है ना। और हम महिलाओं को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है साड़ियाँ। और
1: तो संतोई के बारे में बात करते हैं तो संतोई की कहानी 19वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से शुरू होती है और ऐसा माना जाता है कि लगभग 1856 ईस्वी में पारसी व्यापारी सर जमशेद जी जेजीभाई ने सूरत के जोशी परिवार के 3 बुनकरों को चीन भेजा ताकि वो इस विशेष ब्रोकेट रेशम की बुनाई की कला को सीख सके।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आंटी। और वापस लौटने पर भाइयों ने अपने चीनी शिक्षक छुई का नाम अपना लिया और उन्होंने रेशम बुनाई की कला भी सिखाई थी। सन शब्द गुजराती शब्द क्रांति से निकल जो चीन बताया संचुई के नाम से
1: उनके शिक्षक का नाम और उनका जो
0: नाम भाई थे।
1: और बम्बई में 1950 के दशक तक संचुई साड़ियों का उत्पादन जारी रहा और जब बनारस के बुनकरों ने इन ब्रोकेट को बनाने की कला सीख ली तो उसी कपड़े का उत्पादन बहुत कम कीमत पर शुरू कर दिया गया और इसी तरह कुछ जटिल बनारसी डिजाइन संचोई रेशम पर भी दिखाई देने लगे।
0: बिल्कुल सही कहा। एक है दो मतलब जो अक्सर एक ही रंग के होते हैं और संचोई साड़ियों की एक और खास बात ये आती है कि इनके कपड़े की सतह साटन जैसी होती है और एक जटिल और तकनीकी बुनाई से बहुत मतलब थोड़ा जटिल है ये तकनीक
1: इसको टाइम लगता है चीजें बनाने में। तो इसमें 1 से 2 ताने और 2 से 5 बाने के रंगों का उपयोग होता है। ये साड़ियाँ बेहद हल्की और पहनने में मुलायम होती हैं। संचोई की कई अलग अलग किस्में होती हैं जैसे कि सैटिन संचोई जो कि एक ही रंग के सैटिन कपड़े पर जो साटन का कपड़ा होता है उस पर आधारित होती है और इसमें
0: ताना या तो एक रेशम और एक सोने के धागे का या 2 रेशम के धागे और 1 सोने के धागे का इस तरह से इसको बनाया जाता है।
1: और इसके साथ एटलस या गिल्ड कपड़े की सतह शुद्ध साटन की होती है। अन्य कपड़ों की तुलना में एटलस या गिल्ड भारी होता है और जरी के अतिरिक्त उपयोग के कारण इसमें अधिक चमक भी होती है। और मुजफ्फर का डिजाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण थोड़ा अलग सा दिखता है।
0: हाँ बिल्कुल अलग लगती है संचोई साड़ी और ये झाड़ियों या पेड़ की शाखाओं जैसा भी प्रतीत

0: मूर्तियों, फूलों की मालाओं के बीच बैठे मुर्गों की आकृतियों से सजे होते हैं। ये पूरी साड़ी पर फूलों और फूलों से भरी टोकरियों से घिरे रहते हैं। कभी कभी पल्लू पर मोर, टोकरियाँ, फूलों के गुच्छे या शिकार के दृश्य अधिक सघनता से बनाए जाते हैं। तंजोरी रेशमी साड़ियों को कुछ मोहक मनमोहक पुष्प ज्यामिति और फैसले डिजाइन से भी सजाया जाता है।
1: हाँ, बहुत ही अजीब सी एक क्लासिक डिजाइन होती है तंजोरी साड़ियों में।

0: इससे मैं सभी भाषाओं को भी जानता हूँ, मुझे 25 भाषा आती है, लेकिन सबसे जो भाषा अच्छी लगती है, सबसे खूबसूरत है, तो वो प्यारी भाषा है हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा के बराबर उनको मतलब वो उनको बहुत अच्छी लगती है हिंदी बोलना, इसलिए वो 25 भाषाओं को जानते हैं।
1: हाँ, लेकिन आपने 25 भाषाओं के नाम नहीं लिखे, आप बताइए हमें कि आपको कौन सी 25 भाषाएं आती हैं, और मुझे थोड़ा सा बताइए कैसे आपने सीखी, जितनी भाषाएं सीखना आसान नहीं होता है, क्योंकि आप जब अपने विचार हमसे भेजेंगे, अपना अनुभव हमसे साझा करेंगे, तो हो सकता है हम भी आज भी कोई भाषा सीखने के लिए चाहत हमारे मन में आ रहा है, जिसका हमें डर होता है कि अरे भाई और कोई आसान तरीका भी हो ना हमें मिल जाए, तो आप थोड़ा सा बताइए कि आपने कौन कौन सी 25 भाषाएं सीखी हैं और किस तरह से सीखी हैं, और उनका आपके जीवन में कहाँ कैसे उपयोग हो रहा है, इस पर थोड़ा सा बताइए। तो सबसे बड़ी बात की आज हम बात करने वाले हैं कि भाषाओं से जो जुड़े संस्कार हैं वो क्या है। तो आपसे क्या कभी हमने सोचा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बोले जाने वाली जो भाषाएं हजारों जाति हैं एक दूसरे से इतनी भिन्न क्यों है, है ना? देखने सुनने में भले ही बिल्कुल अलग लगे, लेकिन हाल ही में एक अध्ययन हुआ जो हुआ उसमें चौंकाने वाला खुलासा सामने आया कि चाहे भाषा कोई भी हो उनकी बुनियादी संरचना और उन्हें गढ़ने वाले जो नियम है वो आश्चर्यजनक रूप से एक समान बिल्कुल। और साथ ही ये समानता इसलिए है क्योंकि इन सभी भाषाओं की उत्पत्ति हमारे मस्तिष्क की एक ही प्रकृति कार्य प्रणाली से हुई है। यानी हम मनुष्य चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने में क्यों न रहे, हमारे सोचने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मूल तरीका एक ही गहरे साथी में भरा हुआ है। यानी अगर हमें दुख होगा तो हम रोएंगे, हमारे आंसू निकलेंगे, चाहे वो कोई अमेरिका में रहने वाला हो, चाहे वो हिंदुस्तान में रहने वाला हो। ये खोज साबित करती है कि हमारी बोलियां भले ही अलग हो लेकिन हम सभी भीतर से एक ही मानवीय सूत्र से जुड़े हैं। बहुत बड़ी बात आती है अगर हम इसे समझ पाए तो कितनी बड़ी बात है कि हम भीतर से एक मानवीय सूत्र से जुड़े हैं, है ना? और भाषा का जो सीधा संबंध है संस्कार और सभ्यता से होता है। हम अपनी भाषा के संस्कार भूलते अगर जा रहे हैं तो गलत बात है। इसी संदर्भ में भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के शब्दों का अगर हम यहाँ उल्लेख करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की।
0: ये जो भाषा जानते थे समझते समझ आता है ना कि जानते हैं
1: जी बड़ी बात है। हमारे मन में क्या रहता है कि अगर हम अंग्रेजी भाषा नहीं सीखी तो हमें कुछ भी नहीं सीखा, है ना? हम मॉडर्न नहीं चलाएंगे, हमें सम्मान नहीं मिलेगा या हम विकास नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतनी बड़ी वैज्ञानिक और राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैंने अपनी मातृभाषा में गणित और विज्ञान की रुचि ली। देखिए
0: शुरू करते हैं भाषाओं को अलग अलग तो हमारा जो मस्तिष्क का वो हिस्सा है ना एकदम से वो एक्टिव हो जाता है और उसके बाद ना वो हमारा जो दिमाग है बहुत शार्प हो जाता है जिसकी वजह से हम अच्छे से और भाषाओं को सीख पाते हैं, हम और चीजों को अपने अच्छी तरीके से कर पाते हैं।
1: बिल्कुल आपने देखा होगा कि लोग फ्रेंच भाषा सीखते हैं, उनका जीवन

बिल्कुल जरूरी है। और इन संवादों से स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के बारे में ज्ञान और समझ गहरी होती है। भाषा सीखने से लोगों को अन्य संस्कृतियों से परिचित होने का अवसर मिलता है। इससे किसी संस्कृति के अनूठे दृष्टिकोण, बारीकियों और इतिहास उनके जो इतिहास उनकी समझ है

0: जब आप अपनी बात रखते हैं तो वो भाषा ही आपके काम आती है, वो शब्द ही आपके काम आते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को दोगुना कर देते हैं।
1: जब कोई जब कहता है कि मुझे इतनी भाषा आती तो हम सच में एकदम से कहने की कैसे इतनी भाषा
0: समझ जाते हैं और हमारी दृष्टि उसके प्रति सम्मान और

जो है उन्होंने लिखी भेजा है अपने उनके साथ जो घटना हुई वो लिखी भेजी है उन्होंने। तो वो लिखती है कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी तब मेरा छोटा भाई जो मुझे लगभग 6 साल छोटा है मेरे साथ स्कूल में खेल रहा था। हमारे गांव के स्कूल में पीपल के बड़े बड़े पेड़ थे और उन पेड़ों पर मधुमक्खियों के विशाल छत्ते लगे रहते थे। खेलते समय किसी ने शरारत में एक छत्ते पर पत्थर मार दिया जिसके बाद मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया और मेरे छोटे भाई को कई मधुमक्खियों ने काट लिया और उसके बाद उसके पूरे चेहरे हाथ पैर में बहुत ज्यादा सूजन आ गई। हालत इतनी खराब हो गई कि उसे उल्टियां भी होने

0: बिल्कुल
1: उठ लेकर आप पर आएगा। तो ये कहने का मतलब है कि आप कहीं भी किसी भी तरह की कोई शरारत जब करते हैं, जाहिर शरारत करिए, मीठी शरारत जिसे हम करते हैं, लेकिन गलत तरीके से हम काम करते हैं तो उसके थोड़े से दुष्परिणाम
0: और ये बहुत खतरनाक भी हो जाता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा काट लिया जाते हैं, बहुत ज्यादा अगर जहर फैल जाता है तो जान की बन आती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, तटैया होता है, मधुमक्खी होती है, सांप है, इन सब अपना रस्सी जा रहे हैं।

0: कि भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं बल्कि हमारी संस्कृति जीवन मूल्यों और संस्कारों के संवाहक है। हम जिस परिवेश और भाषा में बड़े होते हैं उसी से हमारे आचरण शिष्टाचार और सोच का निर्माण होता है। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जुड़े रखती है, सिखाती है कि बड़ों से बात करते समय आदर सूचक शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है।
1: और इसके श्रोता जैसे हमने पूछा था की किसी भाषा आती है, हमारे श्रोता जो लिखते हैं की मुझे इंग्लिश, हिंदी और प्यार की भाषा बोलनी थी लेकिन ये पढ़नी आती है। और सिंधी भाषा सिर्फ बोलनी आती है, संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है। और सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी मेरे से एक कदम आगे हैं, उन्हें इंग्लिश, हिंदी, सिंधी और प्यार की भाषा पढ़नी लिखनी और बोलनी आती है और संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है। बहुत बहुत ही ज्यादा भाई ज्ञानी है आपकी पत्नी से।
0: इससे भी अच्छी बात है लेकिन सबसे बड़ी बात है आपने कहा प्यार की नहीं
1: मोहब्बत है ना,
0: बहुत बड़ी बात है,
1: सबसे बड़ी बात है।
0: भाषा तो आपने सीखी लेकिन अगर आपके बीच प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है तो सब भाषा भी झूठी हो जाती है। बिल्कुल है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं बल्कि संस्कार, संस्कृति और आचरण का आईना है। ये हमारे विचारों को आकार देती है, हमारे परिवेश और जीवन मूल्यों को दर्शाती है। एक सभ्य और मर्यादित भाषा का प्रयोग ही वास्तव में भाषा से जुड़े संस्कार को दर्शाता है जो व्यक्ति की व्यक्तित्व का निर्माण करता है।
1: और एक और श्रोता है जो लिखते हैं की मुझे हिंदी के अलावा गुजराती और इंग्लिश आती है और गुजराती सीखना आसान रहा। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं की मुझे गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत पंजाबी और सिंधी आती है, वैसे दो तीन और भाषा थोड़ी थोड़ी समझ भी कर सकती हूँ। बहुत अच्छी बात है इसलिए यही श्रोताओं का विचार है ना, वो विचार इस वजह से भी है उनको तरह तरह की भाषाओं का, शब्दों का, व्याकरण का ज्ञान है

जो इतिहास और मानव पहचान को जीवित भी रखती है। और बाकी जैसा आपने लिखा कि वो लिखते हैं गुजराती, मराठी, हिंदी, मेघी, पंजाबी, सिंधी, दो तीन भाषाएं थोड़ी थोड़ी समझती भी है और बोलती भी है, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। और एक और हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि भाषा किसी भी समाज की संस्कृति का दर्पण होती है, हमारी मातृभाषा ही हमें बड़ों का आदर करना सिखाती है, जैसे कि आप कहकर बुलाना, छोटों को प्यार देना और अतिथि देवो भव जैसे सामाजिक मूल्य सिखाती है, और साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं

nghĩ

स्वतंत्र लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, शुभ विचार या भलाई की चाह, और इसका मतलब किसी व्यक्ति या समाज के प्रति प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और निष्पक्ष रहने का सच्चा इरादा रखना है, जिससे कोई द्वेष या स्वार्थ न हो। बिल्कुल सही दिखा, वही एक श्रोता ने लिखा है कि सद्भावना यानी अच्छी नीयत, दूसरों के प्रति शुभ भावना और भरोसा। जब किसी व्यक्ति के मन में दूसरों के लिए प्रेम, दया, सहानुभूति और सहयोग की भावना होती है तो वो किसी का बुरा नहीं सोचते, उसकी भलाई करता है, तो उसे सद्भावना कहते हैं। और साधारण बोलचाल में किसी के साथ निष्पक्ष और मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना, जिसमें कोई छल, कपट या द्वेष न हो, सच्चाई और ईमानदारी का इरादा

और इस प्रकार ये लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, अच्छे और अच्छे विचार। मन में बसने वाली वो सुंदर भावना है जो प्रेम, सम्मान और अपनापन बढ़ाती है। जहाँ सद्भावना होती है वहाँ रिश्तों में निखार, समाज में शांति और जीवन में खुशी बनी रहती है। बिल्कुल सही है। और एक प्रकार लिखते हैं कि सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक महत्वपूर्ण मंत्रपूर्ण है। और वही एक प्रकार ने लिखा है कि आज के समय में जहाँ समाज में विभाजन और असहिष्णुता बढ़ रही है, वहाँ सद्भावना की प्रासंगिकता बहुत अधिक है। ये विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं को आपस में जोड़ने का काम करती है। वसुधैव कुटुंबकम पूरी धरती ही परिवार है। इस भारतीय सोच सद्भावना पर ही टिकी है। ये जो भारतीय सोच है उसी सद्भावना पर टिकी है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और विवादों को सुलझाने के लिए देशों के बीच में भी सद्भावना का होना अनिवार्य है। बिल्कुल। और एक छोटा ये लिखे एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ से मुक्त होती है और मानवता, प्रेम, करुणा और भाईचारे को बढ़ावा देती है। सद्भावना केवल एक नैतिक गुण नहीं है बल्कि एक शांतिपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण की बुनियादी जरूरत है। जब हमारे विचार शुद्ध होंगे तभी समाज का कल्याण।

0: भावनिक श्रद्धा लेकर की सद्भावना अच्छे विचार दूसरों के प्रति भलाई की भावना प्रेम पूर्ण व्यवहार और ये किसी के मन में दूसरों के लिए ईर्ष्या देश या वैसा भाव नहीं रखकर आपसी भाईचारा और सहयोग बनाए रखने की एक स्थिति है और सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन है।
1: बिल्कुल, समय जो होता है वो लिखते हैं कि जहाँ सद्भावना होती है वहाँ झगड़े कम और प्रेम अधिक होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सद्भावना अपनानी चाहिए। और उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि यदि हमारे पड़ोसी पर कठिन समय आए और

बिल्कुल। और हम बता देते हैं उनको दाल पीठा की रेसिपी क्या है। तो दाल पीठा बिहार और उत्तर प्रदेश का व्यंजन है जिसमें जो चावल के आटे और दाल आमतौर पर चना मूंग और उड़द से बनाया जाता है। वहाँ अपने पत्ते होने के कारण ये बेहद स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट होता है। हमने बताया इसके बारे में। और इसमें उन्होंने कहा है कि भाप में पकाया जाता है जिसमें तेल या घी का उपयोग ना के बराबर होता है। सर्दियों के मौसम में विशेष रूप पौष के महीने में बिहार के घरों में बड़े चाव से बनाया जाता है। कुछ पीठा सिर्फ दाल से नहीं तरह तरह के बराबर भूनी मूंगफली तेल मावा गुड़ नारियल इन सब चीज़ों से बनाया जाता है। और इन्होंने जो ठेकू है उसकी भेजी है रेसिपी, तो उसमें गेहूँ का आटा चाहिए 2 कप, गुड़ 1 कप और बारीक कटा हुआ कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए गुड़। घी मोयन के लिए 3-4 बड़े चम्मच सूखे नारियल, 2-3 बड़े चम्मच बारीक कटा या कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए और 100 1/4 चम्मच इलायची पाउडर 1/6 चम्मच होना चाहिए 1/4 चम्मच और

0: सूखी कुरकुरेपन के लिए सौंफ, इलायची पाउडर और कसा हुआ नारियल डालें। मोइन डालें। अब आटे में आटे को दोनों हाथों से अच्छी तरह से रगड़ें। जब आटा मिक्सी में बनने लगे तो मोयन जो है वो एकदम सही है। अब आटा गूंध लीजिए और छने के गुड़ के पानी को थोड़ा थोड़ा डालकर स्वस्थ आटा गूंदना है। इसका मुलायम नहीं होना चाहिए, इसे ज्यादा मुलायम नहीं करना है। और आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाइए और आटे पर थोड़ा सा तेल लगाकर लोई को दबाएं और मनचाहा डिजाइन बना लीजिए। अगर कच्चा ना हो तो हाथ से भी आप कांटे की वजह से ही बना सकते हैं और धीमी आंच पर तल लीजिए। आपका जो तेल में आराम से निकालिए।
1: आपने इतनी जल्दी में बताया, मुझे तो भाई आपकी बनाना आया ही नहीं है। मुझे लगता है हमारे छोटा जिनको ठेको और दाल पीठा बनाना आता है वो आराम से बनाएंगे।
0: बिल्कुल, और आपको वहाँ पेज से पेज पेज पर मिली गई
1: जाएगी तो बनाने की मेरी समय की कमी
0: एक वजह से हमें थोड़ा सा जल्दी
1: होगा। तो चलिए अब चलिए कार्यक्रम की मंडाकिनी जोशी और आपके श्वास तक को दीजिए इजाजत।

0: में आ गया
1: जी, खुश हुआ।
0: क्या बात है सर, बातें हो रही जयपुर के जमाने की और आपने बताया कि न केवल आपने नाटक किया बल्कि वहाँ एक कंपोजिशन वाला मामला भी लगातार चलता रहा और अलग अलग कार्यक्रमों की अपनी योजना भी चलती रही। तो एक तरह से आपका वो रचनात्मक उत्कर्ष का पूरा दौर था। जयपुर के बाद आप यात्रा जीवन की आपको कहाँ लगी?
1: जयपुर के बाद मेरा ट्रांसफर जो है 5 साल पूरे हो जाने के बाद अल्मोड़ा हुआ।
0: अरे गजब, पहाड़ों पर
1: पहाड़ों पर। और मेरे जीवन का और सबसे कष्ट तो मतलब यू नहीं, मतलब मुझे अल्मोड़ा से ही शुरू होने वाला था। सब सबसे शुरू नहीं हुआ था क्योंकि शुरुआती स्टाफ भेजा जाता है ना, तो उससे मैं गुजरात की तरफ से मैं कहा तेरे इंजीनियर से, तो सेंटर तब तक शुरू नहीं हुआ था ज़्यादा का। तो लेकिन मैं मैदान पे रहे तो इतना आदि था और होमसिक को मैंने बताया था कि नहीं था, तो वो पहाड़ों की जिंदगी मेरे लिए बहुत कठिन थी मतलब, और परिवार भी था, बच्चे बच्ची छोटी थी तब। तो अब लगता है कि यार बुढ़ सा थी, तुम जल्दी चले आए वहाँ से। अच्छा था वो एक अलग अनुभव था। तो उसमें यह कि स्टेशन शुरू नहीं हुआ था, काम भी उतना नहीं था, ऑफिस तक जाना है और प्लानिंग करनी है और कब होगा ये सब तय होना है सारा कुछ। लेकिन वो वहाँ चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, करते जाओ, चलते जाओ, तो ये सब था। और जो आदमी पहली बार गया हो तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, घूमने जाओ तो अलग बात है, लेकिन आपको रहना हो और जो कभी रहा ना हो, कभी रहा ना हो, तो वो उसके लिए तो वो कठिन दौर था। लेकिन वो गुजरा और मैं एक साल के बाद ही वापस आ गया वहाँ से और थोड़ा फिर बॉम्बे आया।
0: अच्छा, इसी सिक्स में क्या बात है। तो ये तो पंडित जी का शहर था, तो वो तमाम चीजें
1: और वो भी सब जगह पे, वो पंडित जी अजय जी वहाँ पे और रविशंकर जी का वहाँ पे वो था, ये सब भी
0: उदय शंकर जी का
1: तो वो सब भी देखा, घूमा फिरा, भी सब अच्छा भी लगा उसका इन सब। लेकिन मैं तो हैरान होता था कि यहाँ ये लोग कैसे हैं, उस वक्त बहुत ही हैरान होता था भाई। ये लोग लगता था कि जिंदगी तो मैदान में ही है,
0: मुंबई 80 के दशक की मुंबई बहुत ही अलग तरह का मामला था। आप जैसे जयपुर शहर से आ रहे थे, वहाँ के पले बड़े पैदा ही ट्रांसपोर्ट में, तो मुंबई आपके लिए बहुत बड़ा दायरा था, बहुत बड़ा क्षेत्र था। पहला अनुभव क्या था मुंबई का?
1: नहीं, पहला अनुभव तो यही था कि एक तो ये थे सपनों की नगरी थी, फिल्मों में देखा ही देखा था और सब कुछ था। आज तो खैर हालत ही खराब है,

0: तो अच्छा खासी भीड़ तो मुंबई में हमेशा रही है।
1: बिल्कुल
0: ये भीड़ भाड़ वाला शहर है, तो हर कपड़ा देखने वाला यहाँ आता है और काम ढूंढने वाला यहाँ आता है। तो फिर यहाँ आने के बाद वो बसों का सफर, लोकल ट्रेनों का सफर, ये पहले की दुनिया थी, लेकिन था कि कुछ लगा था कि बॉम्बे में कुछ होगा, अच्छा लगेगा। और वो धीरे धीरे जिंदगी ढलती चली गई। उस हिसाब से हम शुरू में टॉपिंग पे रहे, गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ पे, तो 11-11

seni bir şey sanır.

0: हुआ करते थे, मतलब अभी जरूरत है, उनके कैसे घरों घरों में चलते थे, बजाए जाते थे, मोहल्लों में मतलब चलते थे, शादियों फंक्शनों में ये उसको पीछे बजाया करते थे लोग। इतनी पॉपुलर नॉन फिल्म म्यूजिक कहना चाहिए। तो वो दौर था जिस वक्त मैं बॉम्बे में एंटर हुआ था, और नेचुरली जो गजल का शायर होगा उसकी पहली ख्वाहिश होगी कि जगजीत सिंह तक किस तरह से पहुँचूँ,
1: बिल्कुल,
0: और वो उन तक मेरे शब्द भी पहुँचे। सुनाने के बाद तो ये सिलसिला चलता रहा, और लेकिन जगजीत सिंह साहब से पहले मेरी भूपेंद्र जी से बात हुई।
1: अच्छा, अरे वाह वाह, मुझे ये पता है जी, अब हमने साल में काम किया है आपके करीबी कि भूपेंद्र सिंह की आवाज़ से आपको बेपनाह प्यार रहा,
0: बहुत प्यार,
1: बल्कि हमने उनको बुलाने की बहुत भरसक कोशिश की थी। आपकी इच्छा ये थी कि वो इंटरव्यू मैं लूँ, मुझे सब मैं था नहीं शहर में काम रहा
0: तो भूपी जी मतलब पहले से जिन्होंने एक एल्बम एक रिजो की, और जैसे मैं जयपुर में आकाशवाणी में युवाणी में जो अपनी आवाज़ पहली बार मैंने रिकॉर्ड की
1: जी,
0: तो घर में जिस ढंग से मैंने खुशी का इजहार किया था और अपने आप की आवाज़ को आकाशवाणी से सुनकर खुशी हुई थी, तो वो खुशी मुझे यहाँ पे भूपेंद्र जी की आवाज़ में अपनी गजल सुन के हुई थी। तो वो जी गजल सिंगर ने, और मेरे फेवरेट गजल सिंगर थे गायक ने, जो इसका बड़ा सिंगर को ये हुआ। तो उसके बाद फिर जी जी से बात हुई, तो मैं मिलना चाहता हूँ, उसने कहा आ जाओ, और वो
1: बेटर रोड में
0: हाँ उसको मिला 25 उनका एड्रेस था
1: जी,
0: मैं गया। और उस समय का वक्त था, तो मैं बताना चाहूँगा अपने श्रोताओं को, अपने सुनने वालों को, कि बड़ा आदमी ऐसे ही बनता है। जगजीत सिंह साहब रोज सुबह उनका वो रियाज का वक्त होता था, इतने बड़े आर्टिस्ट जो थे वैसे नहीं थे, रोज रियाज करना उनका काम था। जब मुंबई में होते थे तो वो कानपुर चल रहा है और वो सब कुछ, और मिलने जुलने वाले भी अगर आते हैं तो बीच में आते हैं और बातचीत होती है, और वो उनका सिलसिला फिर रियाज से ये। तो मैं पहली बार गया तो वो कानपुर चल ही रहा था, वो फिर बैठे हुए थे और फिर उन्होंने वो गजल देखी। मेरी कुछ किस्मत ये कि बड़ा अक्सर होता है इतने बड़े लोग आपका मिलना ही बड़ी बात है उनसे, हाँ वो उनका मिल जाना। फिर उन्होंने कार्ड गजल देखे, तो सरगर रियाज जब उन्होंने देखी तो ये मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने तहरीन उसमें कहा कि मैं कर रहा हूँ।
1: वाह,
0: अक्सर होता है कि रख के जाओ, देखता हूँ, करता हूँ, सोचता हूँ, बताता हूँ, है ना। लेकिन उस वक्त उन्होंने उसी वक्त कह दिया ये मैं कर रहा हूँ।
1: वो कौन सी गजल थी, कैसे लिखे थे?
0: ये जो जिंदगी की
1: किताब, जिंदगी की किताब है। वाह वाह वाह,
0: तो ये वो पहली गजल थी जो जिंदगी की।
1: और भूपी जी ने क्या कहा था?
0: वो हैरानी होगी कि उस वक्त पंडित जी वगैरह सब शराब और हल्की हल्की गजलों का दौर था। भूपी जी ने कहा यार मुझे गजलें बहुत है, मुझे हल्की हल्की गजल चाहिए।
1: अच्छा
0: हाँ, तो मैंने पहली गजल जो डिमांड पे लिखी, डिमांड पे वो ये गजल थी, और जिसको मैं न कहीं पढ़ाता हूँ न सुनाता हूँ, और वो गजल जो मैंने कभी आके छुई नहीं।
1: अच्छा,
0: वो गजल शराब पर थी।
1: ओ हो,

0: खुदने नहीं बनाई
1: जी।
0: तो मैं जगजीत जी की आवाज में जो धुन है तो भूल जाए
1: वही
0: उसको जहाँ वो पढ़ देता हूँ
1: जरूर जरूर।
0: ये जो जिंदगी किताब है, ये जो जिंदगी किताब

0: थे और ये बहुत लोकप्रिय हुआ। बात है और ये अक्सर गाया करते थे और सोशल मीडिया तो अब आया है, लेकिन कभी कभी मैं देख लेता हूँ और लोग बताते हैं इस गजल की जो लिस्टिंग हुई है जो व्यूअरशिप है और वो ये है कि पूछ मतलब खूब है
1: बिल्कुल।
0: और तो कमेंट्स है लोगों के ये गजल वो गजल और ये जिंदगी ने बहुत सिखलाई और ये वो शायरी वर्ष ये सब कुछ है और पूरे दुनिया से पाकिस्तान लंदन अमेरिका नया ऐसे कमेंट्स है उस गजल पे। ये गजल तो मुझे दुनिया भर में पहुंचा दिया ये गजल।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपको फोन करें तो आपकी रिंगटोन में भी ये गजल बजती है। जगजीत जी ने गा लिया, गोपी जी ने गा लिया, पंकज जी ने भी उस दौर में गा लिया था।
0: पंकज जी उसके बाद ये रजल जगजीत जी ने गाई, उससे पहले पंकज जी हाँ नहीं पंकज जी पहले ये रजल थी वो जो यहाँ चक्कर पर हादसा होना थी तो पंकज जी से भी जब मिला तो गजल और ये गजल सही नज़र में सबको ही अलग लग जाती है कि ये मुझे से करता है ना। तो इस गजल से जुड़ा एक और भी किस्सा कि ये गजल जब आई तो मतलब उस पूरे एल्बम में ये अलग सी गजल थी, लोगों ने बहुत पसंद की।
1: नबील
0: नबील नबील जी तो इसकी खूब लोगों ने प्रशंसा की पसंद किया सब कुछ किया। इससे जुड़े दो किस्से हैं तो एक तो ये कि उन दिनों दूरदर्शन पर भी जब ये पूरा कमर्शियल नहीं हुआ था तो बड़ा अच्छा सुबह कार्यक्रम आता था वो गजल का जिसमें सुरेश वाडकर हरिहरन पंकज जी कुंकर जी जी साय जी बहुत अच्छा नाम था दूरदर्शन आता था गजल का आरोही
1: आराम।
0: तो ये गजल पंकज जी ने गाई इसमें आरोही
1: जी।
0: अच्छा उन दिनों पता नहीं क्यों या नहीं हुआ तो उसमें राइटर का नाम शायर का नाम नहीं था
1: और एक बाप
0: नहीं था तो उन्होंने गा दी गजल तो ये गजल घर घर में सुनी मतलब उस वक्त दूरदर्शन नहीं था
1: तो आपके संपर्क से गई या उन्हें ये गजल कहीं मिली।
0: नहीं नहीं नहीं इसे रिकॉर्ड होने के बाद की बात है।
1: अच्छा ओके
0: एल्बम आने के बाद में उसके बाद तो ये एल्बम तो हो गया था लोग पसंद भी करते नहीं सकते ये दूरदर्शन पर ये गजल दिखाई जा रही थी सुनाई जा रही थी और उसमें दूरदर्शन भी था जिसमें लोग अच्छे सीरियल देखते थे अच्छे प्रोग्राम देखते थे आरोही बहुत पॉपुलर था तो ये चल रहा था और लोग सुन रहे। तो मेरा एक जयपुर का दोस्त है तो अपने परिवार में बैठते थे तो सुनते थे तो ये जब गजल आई तो कहा यार ये पाकिस्तानी शायर क्या खाते गजल लिखते हैं
1: आपके अपने दोस्त
0: ने और तब तक हमारा संपर्क भी जब है बॉम्बे में वो

0: सोचना नहीं कर सकता था कि ये हिंदुस्तानी का शहर है और ये यही की नजर है। तो ये उसने मुझे बाद में बताया जब हम मिले और सब कुछ। तो उसका नाम है अजय कार्तिक, जो ये जो है जिंदगी का राइटर था।
1: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल है
0: ना। तो मुझसे जब बाद में उसने कहा कि ये यार ये सब तो हम सुन रहे थे और हमें मेरा ये कमेंट था
1: जी।
0: अच्छा दूसरी बात ये कि ये रिजल्ट फलूदार साहब ने सूरत में एक शेख अबू आदम आदम वाला के शायर रहे हैं गुजराती के वह गा रहे हैं तो उनकी पुण्यतिथि पर सूरत से कंसर्ट था। हाँ तो वो पंकज जी वहाँ पे उन्होंने कंसर्ट किया वहाँ खाने के मजरू सुल्तान थे वहाँ पे चीफ गेस्ट थे। तो मजरू साहब बैठे थे सामने तो उन लोग पंकज जी ने गजल सुनाई तो रियल जब शेर सुनाया तो मजरू साहब ऑडियंस में होते हैं आप अपने फिर सुनाओ तो जब जो पूछते थे ना फिर सुनाओ कि शायद मुशायरा हो या म्यूजिक प्रो हो तो ये लगता है कुछ गलत तो नहीं हो गया।
1: हाँ बिल्कुल
0: कुछ तलफुज गलत हो गया या कुछ विश्वास गलत हो गया कुछ मतलब कुछ कमजारा तो नहीं कर बोल दिया या सुना दिया हाँ ये तो सुर का इधर उधर कि फिर सुनाओ फिर एक बार फिर उन्होंने तीन बार ये सुना और हाँ वो ये होगा। तो जब ग्रीन रूम में आए बजू साहब उनसे मिले तो बोले कि ये किसकी नजर थी है उन्होंने बताया कि ये पुस्तक में नौजवान हुआ रहता था तो नौजवान शायर ढूंढ गई राजेश जी को ये बहुत अच्छी गजल है अलग गजल है उसको मेरी तरह से मुबारकबाद देना
1: वाह वाह वाह
0: क्योंकि मुझे सुल्तान पर रिकॉर्ड

0: चला कि वो बड़ा सेंटर जो है
1: जी
0: तो नेहरू सेंटर का एक ऑलिंडिया मुशायरा होता सालाना,
1: बिल्कुल बहुत ही मशहूर
0: मशहूर
1: जी।
0: आज तो वो दौर नहीं है लेकिन एक जमाना था, मतलब तो उसके सुनने वालों में। और जब मैंने पहला मुशायरा पढ़ा तो उस वक्त स्टेज पे अली सरदार जाफरी
1: जी,
0: मजरू सुल्तानपुरी,
1: कैफी आजमी,
0: कैफी आजमी, मुमताज आशिफ गरी, सब बड़े बड़े नाम है ना, बल्कि बद्र निजा साहब, निजा साहब उसकी संचालन कर रहे थे
1: जी,
0: अली सरदार जाफरी से वो थे सदारत कर रहे थे। और सुनने वालों में दिलीप कुमार,
1: बाप रे,
0: अजीत एक्टर और भी और कई जो फिल्म के काफी लोग थे। तो वो दौर था जब रियाज अलग हुआ करता था और सजावट भरा हुआ। तो मेरा पहला बड़ा मुशायरा मुंबई का,
1: क्या बात है,
0: सिर्फ पहला मुशायरा, तो बड़ा मुशायरा तो जिला साहब दिल गए उसकी ओपनिंग के लिए, बल्कि मुझे लीजिए
1: और बाप
0: शुरुआत के एक दो बार हुए।
1: और जिला साहब की अपनी आदत थी, वो बहुत रेफरेंस से थोड़ा बात बुलाया जा रहा है।
0: तो उन्होंने मुझे भाई को बुलाया, मेरा पहला मुशायरा और ये ऑडियंस, ये लोग है ना भरपूर ऑडियंस पूरा हॉल। तो मैंने गजल पढ़ी, तो वो गजल जब पढ़ता गया तो सब अर्शियर को दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, सब कुछ हुआ। और जब मैं पढ़ के आया हूँ तो मुख्तार राशिद और जफर गोरखपुरी,
1: हाँ,
0: तो उस वक्त दाद देने का एक जिद होता था, ये बड़े लोग जो दाद देते थे, जफर गोरखपुरी साहब मेरे बराबर में बैठे थे जहाँ से, तो अगर किसी को बहुत अच्छा लगा या प्यार हुआ तो मुशायरा तो हो गया।
1: अरे शुरुआत कर रहे थे,
0: हाँ मुशायरा तो हो गया।
1: अरे बहुत बड़ी बात,
0: ये बड़ी बात थी। तो मैं कह रहा था कि उधर नीरज जी का वो हार पहनाना, माला पहनाना
1: जी,
0: तो ये तो हो गया, मुशायरा तो हो गया। और ये ऐसे रजीत साहब ने मुझे हैदराबाद बुलाया
1: गजब
0: अपने घर पर, उनसे वहाँ से मिलना हुआ, सुना सुना हुआ, ये हुआ। ये गजल मैं सुनम मुझे बता रहा हूँ जिसके बारे में
1: जी,
0: ये गजल जगजीत सिंह साहब को बहुत पसंद थी।
1: हाँ हाँ,
0: और जगजीत सिंह साहब ने इसको झुंझु बनाई, रिकॉर्ड भी किया, तो आखिरी एल्बम था ये।
1: ओहो,
0: और वो एल्बम रिलीज होने से पहले वो

0: आसमान से आगे बिल्कुल। तो जब आसमान से आगे किताब का लोकार्पण की बात हुई और मैं जा रहा था, तो मैं उनको अपने धारा सिंह जगजी जी उसका शो करें, मैं उनको इन्वाइट करने गया, बोला कि विचारों का आप करें, तो इसलिए अलग से प्रोग्राम को करते हो। मेरा कंसर्ट है केयर जो है न्यूज सेंटर में, तो उस पर कर देते हैं, फिर उसको किताब लेके आ जाना, फिर आप कर लेंगे। तो चला गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो हुआ वो ऐसा होगा
1: जी।
0: तो किताब लेके रेफर वेफर सबसे जो बंद रेफर लेकर चला गया। तो मैं बिना वापस को बोलने का कि ठीक है तुम ऑडियो बैठो, मैं तुम्हें बुलाऊंगा और वहाँ उसको कर देंगे। तो मैं बैठ गया, फिर मैंने वो गज़ल गाई दूसरी गज़ल, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, मेरे दामन में मेरे वास्ते या कुछ भी नहीं। तो जिंदगी जी ने यह गज़ल गाई और उसके बाद श्रोताओं से कहा कि ये गज़ल जो मैंने अभी गाई ये हमारे प्यारे शायर राजेश रेड्डी की लिखी हुई है और आज ये इत्तेफाक है कि वो हमारे ऑडियंस में मौजूद है, तो मैं चाहता हूँ कि वो उतर आए और आज उनकी किताब का भी वो है, वो लेके आए किताब। तो फिर मैं उतर गया और वो नमस्ते और से क्लैपिंग वो सब हुआ, तो जगजी जी ने वो उसका
1: रिबन खोला,
0: रिबन खोला और ऑडियंस के सामने ये सब हो गया और तालियाँ वालियाँ सब हो गई और मैं स्टेज से उतरने लगा।
1: जी
0: तो ले गई राजीव सिंह को, मैं आया तो उनका कंसर्ट है, लेकिन स्टेज है पूरा हॉल है, म्यूजिक का पूरा सेटिंग होता है, वो गा रहे हैं, वो बीच में उन्होंने बुलाया हुआ। फिर वो उन्होंने कहा कि भाई एक माइक इधर लगाइए और एक पॉलिंग बाइक दीजिए, हाँ इसकी म्यूजिक को भी नहीं कल्पना नहीं और तो वो दिया उन्होंने कि तो अब वो गजल पढ़िए जाने की मिलान बक्सी।
1: और एक बहुत
0: तो उससे पहले बैठी में गायत्री की मतलब जो पसंद थी गजल तो सर वो गजल पढ़िए जाने की मिलान बक्सी। तो बात वही खत्म हुई, मैंने पढ़ा जाने की मिलान बक्सी परिंदे में जान बाकी
1: जी,
0: वो ये रहा है कि मैं मतलब मैंने पढ़ा शुरू रखी और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गया।
1: अरे गजब
0: कि किसी शायर के साथ नहीं हुआ
1: जी जी,
0: आज तक किसी शायर के साथ नहीं हुआ,
1: गजब गजब
0: ऐसा विमोचन और ऐसी ऐसा सम्मान ऐसा प्यार। तो मैं पढ़ रहा हूँ और उसे गा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ वो उसे गा रहे हैं,
1: अद्भुत अद्भुत
0: अद्भुत अद्भुत। तो और जब घर पे मैंने शिवजी जी को बताया कि ऐसा हुआ तो वो मुझे क्यों नहीं ले गया,
1: अरे
0: क्यों
1: नहीं ले गए,
0: और वो आपको मालूम था कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो मेरे को ये असर नहीं तो मुझे बता दी। तो ये था उनका प्यार, ये था उनका शायर को सम्मान देने का तरीका। तो इस गजल के साथ ये जुड़ाव है, इसलिए मैंने

Mm-hmm.

0: मुबारक गुजारा है और मुझे याद है कि आपके जमाने में जो कार्यक्रम आपने शुरू किए उसमें सरगम के सितारे उजाले यादों के मंथन जैसे कार्यक्रम के मुझे लगता है कुछ और ही करें गुलदस्ता एक कार्यक्रम है जो आपने शुरू किया सचिन भाई आज के दौर में शुरू हुआ तो ये तमाम चीजें हैं इस दौर को याद कीजिए।
1: नहीं वो मेरे पूरे करियर का पीक भी था और रनिंग दौर था हर तरह का मतलब ये नहीं कि मेरे मेरी आखिरी को बहुत पीक भी कहना चाहिए या मेरा करियर का दूसरी पीरियड था कुछ भी ऐसा नहीं मेरे क्रिएटिव एक्सप्रेशन का भी और लोगों से जुड़ाव का भी और चीज़ों को एक्सप्लोर करने का भी बेस्ट पीरियड था और टीम का जवाब भी जिससे मुझे उसके तरह से इन चीज़ों को हमारने और साकार करने का अवसर दिया उसमें मैं बार बार नाम लूँगा फिर सबसे पहले यूनुस राकेश जोशी उस वक्त हमारे जो साथी लोग थे लोकेंद्र जी महेंद्र मोदी ममता संजय प्रकाश संजीव कमलेश और शेट्टी जी जो हमारे मैनेजर हुआ करते थे
0: संभालते
1: थे तो एक अच्छी टीम थी जो हर तरह से जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट था वो था और वो अपने को भरपूर सहयोग के साथ भरपूर इन्वॉल्वमेंट के साथ भरपूर पोटेंशियलिटी के साथ
0: मतलब
1: हर आदमी ने अपना बेस्ट दिया
0: बिल्कुल
1: और हर रोज
0: एक नई चुनौती
1: कम होता है
0: जी।
1: तो मैं हमने तो ऐसे ऐसे दौर देखा और किया है कि कोई बड़ी हस्ती है पहला जी आए आनंद जी आए
0: बिल्कुल
1: है ना अनु मलिक जी आए कौन कौन नहीं आए यहाँ पे
0: बिल्कुल
1: सारे और संगीतकारों में भी बड़े बड़े लोग
0: नदी जी आए
1: हाँ
0: बिल्कुल
1: खयाम
0: साहब आए
1: और
0: बातों का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा
1: बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े
0: नौशाद साहब आए और हम उनको छोड़ने उनकी गाड़ी तक गए हैं और वही एक घंटे बात हुई
1: और नौशाद साहब तो ऐसे थे कि वो उनको बोलने का बहुत शौक था
0: जी
1: अच्छा भी बोलते थे और इतना साउंड था बोलने का
0: बिल्कुल
1: और उनको शौक भी था तो बहुत अच्छी बातें करते थे देर तक बातें करते थे कैसी आजमी साहब तो मतलब ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियों के थे हमने ये भी सोच किया कि इनको हम जो गाया नहीं कर रहे हैं कि एक घंटे में बांध दिया दो घंटे में बांध दिया इनको कभी सरगम के सितारे कभी हमारे मेहमान कभी इसमें उसमें जितना हम उनके ले सकते हैं उनका श्रोताओं के लिए क्योंकि ये लोग बार बार नहीं मिलते हैं ये लोग तो कहाँ आएंगे अब दुनिया में तो इनका जो है वो है जो भारत के पास है वो किसी के पास नहीं है किसी के पास नहीं है वो आर्काइवल रिकॉर्डिंग और स्टेशन से है लेकिन इस तरह की जो रिकॉर्डिंग जो है इसकी लाइवली रिकॉर्डिंग जो है वो संस्मरणा रिकॉर्डिंग टाइम का जब गानों पर बात हो रही है या वो गाने कैसे बने उस पर बात हो रही है
0: जी
1: है ना आपका फेवरेट क्या है आप वो सारा कुछ पूरी उनकी यात्रा
0: एक से बढ़कर
1: एक से बढ़कर एक वो हुए प्लस कहीं कहीं कोई चला गया अचानक तो उसके लिए छुट्टी भी हो तो सब लोग एक फोन पर पूरी टीम रोहित भारत की शुरू हाजिर पूरा प्रोग्राम शुरू हो गया ये सब वो एक अनुभव जो है वो रोहित भारती में हुआ और कहीं नहीं होता
0: बिल्कुल बिल्कुल तो विविध भारती में वो जोश वो जुनून वो जज्बा हमेशा रहा कि चाहे मौजूदा कलाकार हो चाहे ट्रिब्यूट हो विज्ञान के साथ लोगों ने गाइड किया। एक चीज जो क्रिकेट का आपका शौक उसकी भी मैं बात करना चाहूंगा एक बहुत जुनून रहा है आपको क्रिकेट का मुझे याद है कि वर्ल्ड कप हो रहा है तो आपने स्पेशल प्रोग्राम शुरू कर दिया था और मैंने वो चुनौती निभाई थी कि रोज सुबह एक बुलेटिन दे रहा
1: है क्रिकेट का शौक बहुत अच्छा रहा और शायद ये हमारा राष्ट्रीय खेल शुरू से रहा है
0: जी
1: तो थोड़ा बहुत खेला भी लेकिन देखने का शौक जो है वो ये तो बहुत जमाना था दिवाली जी को वो आनंद था कि इसके लिए मैंने ऑफिस में छुट्टी तक ली है देखने के लिए
0: जी जी
1: तो ये भी हुआ है और साथ साथ जब हम वर्ल्ड कप जीते 83 में
0: बिल्कुल
1: उसके बाद कभी कमाल ही हो गया मतलब और जब जयपुर में आकाशवाणी में प्रोग्राम एक दिन था स्पोर्ट्स भी था देखता था

0: कि वो हम लोग एमए में साथ थे, एमए इंजीनियरिंग कर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो एक ही क्लास में थे और हम दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था। मैं जैसे मैंने बताया हमारे पिताजी पीटी डिपार्टमेंट से काम करते थे, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, सरकारी मुलाजिम के बेटे बेटा, उसका परिवार सलाह बना, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम लोग बहुत समृद्ध थे। लेकिन जो रेखा की फैमिली है वो सिंधी कम्युनिटी है, वो लालवाली रहे हैं मतलब, तो वो में थे जापान से हमारे फादर-इन-लॉ, दोनों ब्रदर-इन-लॉ हांगकॉन्ग मनीला, तो वो उनका बैकग्राउंड ही अलग था, उनका आर्थिक स्तर भी बहुत अलग था
1: जी,
0: तो कोई संभावना नहीं थी इसकी, लेकिन वो जो होता है वो होता है। तो जब उस वक्त मेरी थोड़ी बहुत पहचान गीतकार के रूप में, थोड़ी पत्रकार के रूप में सब होने लगी थी दिखने वाले के, तो वो अट्रैक्शन भी हो ही गया था और हम लोगों में मिलना जुलना सब कुछ। लेकिन शादी तक की बात जो उनका साहस था
1: जी,
0: वो बहुत नेचुरली मैंने किया था, लेकिन मैं हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था और जुलूम था एक तरह से, तो उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने कहा ठीक है। और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है
1: जी,
0: तो घर में बता के तो उन्होंने कहा कि संभव नहीं है।
1: ओके,
0: घर में तो वहाँ तो राजी होने का सवाल ही नहीं उठता कि वो बांध जाए, तो अच्छा उस वक्त हमारे फादर-इन-लॉ जापान में रहे थे, ये हमारी जो सास है फादर-इन-लॉ जो है वो इंतजार के रह रही थी, सब कुछ दोनों भाई बाहर थे, तो घर का कोई पुरुष यहाँ मौजूद नहीं था और माँ को भी ये बताने की और इस हालत में उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे समाज में शादी करते हैं।
1: अरे बाप रे,
0: तो आर्य समाज ने तय हुआ शादी, हम मेरे को निकट के मित्र पाँच साथ, और उस वक्त भी मतलब मैं क्योंकि अपने कॉलेज के ज़माने से अपनी एक्टिविटीज की वजह से लिखने पढ़ने और थिएटर का जो माहौल था, तो अपने लेक्चर का चेहरा बन गया था, मतलब ये था तो वो सब आगे आगे करते थे, तो मेरे दो तीन जो लेक्चरर्स थे वो शादी में आए।
1: अरे वाह,
0: आर्य समाज की शादी में
1: क्या बात है,
0: तो उन्होंने संभाला और उनसे कुछ हुआ। अच्छा हुआ ये कि मैं शादी के बाद वो अपने घर चली गई,
1: अरे
0: मैं अपने घर चला आया।
1: जी जी जी
0: तो उन्होंने कहा कि अब मैं बता सकती हूँ कि हम मैंने शादी कर ली है, और तो अब तो
1: छोटी
0: होंगी, तो हमारे जो लेक्चरर्स थे तो नेचुरली वहाँ से रिलेटिव छोड़ा था कि नहीं नहीं तुम्हारे पिताजी को बुलाते हैं वो करते हैं, तो उन्होंने दौड़ दौड़ जापान से लौट के आए, फिर उन्होंने सब बता दिया सब कुछ, तो उन्होंने हाँ हाँ करें हम उनसे बात करेंगे, उनको बुलाते हैं सब कुछ करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ये मुझे लग नहीं रहा कि वो मानेंगे, तो मुझे यहाँ से ले जाओ।
1: अरे बाप रे,
0: ये इनकी हिम्मत बता रहा हूँ मैं आपका, तो मुझे ले जाओ यहाँ। तो मैं अपने दो लेक्चरर्स के साथ घर गया हूँ उनके, और हमारे फादर-इन-लॉ जो हुआ जिससे हाँ हाँ ये बढ़िया चाय वाय थी सब कुछ, तो उन्होंने वही कहा कि थोड़ा हमें वक्त दीजिए ना, हम वो ढंग से करते हैं करेंगे, लेकिन ये फिर मुझे अलग लगेगी ले देंगे,
1: ये नहीं हो रहा,
0: ये नहीं होने देंगे, मैं भी चलूँगी मैं भी चलूँगी। तो फिर उन्हीं के साथ हम लोग बाहर आ गए और हम लोग निकल आए, और फिर मैंने अपने घर वालों को भी सब बताया
1: जी जी जी
0: जब उनको लेके आया कि मेरी शादी हो गई है
1: और ये
0: है, तो इस तरह से ये पूरी कहानी हुई, और इसके पीछे मेरी तो जो है सो है, सारा साहस इनका,
1: क्या बात है,
0: ये उस जमाने में
1: जी ये हमारे सुनने वालों के साथ शेयर हुई, तो ये भी एक दिलचस्प है, सबसे अच्छी मुलाकातें वो होती है जिनमें आगे की गुंजाइश छूट जाए, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं दो एपिसोड में उनको समेटना बड़ा मुश्किल था, आगे फिर मिलेंगे और कुछ बहुत सारी बातें आपके साथ की जाएंगी, चलते चलते आपको कुछ सुनना चाहेंगे।
0: मैं दो तीन शेयर सुनाता हूँ
1: जी जरूर, ये शायद
0: ये रोजमर्रा का सा कॉन्सेप्ट के साथ, किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता,
1: वाह,
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ जिंदा क्यों नहीं होता,
1: वाह वाह वाह वाह वाह,
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ जिंदा क्यों नहीं होता,
1: वाह वाह,
0: मेरी जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, मेरी जिंदगी के
1: कितने
0: हिस्सेदार हैं लेकिन, किसी की लेके एक आंसू एक कोरे का

0: आंसू पूरी कर, कोरे कागज पर गिरा और अधूरा तक मुकम्मल हो गया।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
0: क्या बात। एक आंसू कोरे कागज पर गिरा और अधूरा तक मुकम्मल हो गया,
1: क्या बात।
0: और ये शेर आखिर में गम छुपाना,
1: गम छुपाना
0: कोई मजाक नहीं, गम छुपाना कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात।
0: गम छुपाना कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है,
1: क्या बात क्या।
0: फिर
1: सर इतनी सारी बातें बोली, मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी गजल सुनाए जो आपके पूरे रचनात्मक सफर की रिप्रेजेंटेटिव हो, जो आपके बीती हो, जिसे आप जरूर सुनाना चाहेंगे।
0: सूरत ये गजल मैं इसलिए खास महसूस करता हूँ रिप्रेजेंटेटिव सफर की, कि रामपुर की एक बहुत मशहूर लाइब्रेरी है रजा लाइब्रेरी।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो उस रिसर्च का नानी गिरा लोग तो आए, बहुत अच्छी महफिल थी। तो उसमें ये गजल जो मैंने पढ़ी
1: जी,
0: तो इतना प्यार मिला, बड़े मुशायरा था जो मेरा पहला अनुभव था।
1: जी जी
0: मतलब किसी
1: भी चीज़ होता है,
0: लेकिन ये गजल मुझे वहाँ दो बार पढ़नी पड़ी।
1: क्या बात,
0: इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला, तो वो हासिल मुशायरा साबित हो गई।
1: वाह।
0: तो इसलिए मेरे लिए वो जो है बड़ी यादगार गजल रही, तो मैं वो उसके पढ़ देता हूँ।

0: का शराब वही वो शराब है ना, ब्रज बरेची का विराज जिसे इंग्लिश बोलते हैं, तो रेगिस्तान में पानी जैसा होता है दिखता है, होता नहीं
1: होता नहीं
0: है ना, मरुस्थल में
1: आग का धोखा,
0: हाँ पानी का धोखा, आग का धोखा, वो सब है। तो ये जो सवाल किया उस पर पूरी जो महफिल थी सब त्याग दिया। अब क्या बताए तू के किसने

0: क्या बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी बातें की।
1: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और पूरे विविध भारती परिवार को मेरी तरफ से धन्यवाद आभार और अपने पूरे परिवार में फिर एक बार अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए और पुराने श्रोताओं से मिलने के लिए मिलाने के लिए मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: धन्यवाद। शुक्रिया।

राह पर गिरकर टूट टूट कर बिखर गए। उसका दिल भी टूट गया, उसे दिल के टूटने की आहट हो गई। उसने टूटे हुए दिल से दूसरे ख्वाब बुनने शुरू कर दिए। बहुत जल्द उसके ख्वाबों की एक नई दुशाला बनकर तैयार हो गई। बस वो ख्वाबों की रेशमी दुशाला पहन रात के सन्नाटे में शाम से बजिया थी अपना सफर पूरा करने के लिए।

वो खेतों मेड़ों से जा रही थी तभी उसे कहीं से रेडियो की आवाज आई। रेडियो पर बज रहा था मोहब्बत का गीत, प्यार का राग। बस उसे उस गीत से प्यार हो गया और उसके कदम झटक गए। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके ख्वाबों से भी खूबसूरत होता है प्यार का।

खुदकती पिछले घरों के पीछे भागती कोयल सरीखी मीठी आवाज में कुछ गाती गुनगुनाती ख्वाबों का सुंदर सितारा लिए चली जा रही थी। नरम नरम धूप के मैदान से लगी हुई फुलवारी पर उसकी आंखें झिझक गई। सुर्ख रंग की पोशाक में वही वो शख्स मुस्कुरा रहा था। शायद ये वही शहजादा था, ख्वाबों वाला शहजादा।

शहजादे ने पलकों की पंखड़ी पर फूलों का झुरमुट कर दिया। फिर एक दिन उसने मुट्ठी में एक बीज समा दिया। उस बीज से प्रेम का अंकुर फूट गया। सुबह के उजास से प्रेम का पौधा जगमग होने लगा। तब से अब तक वो गा रही है प्रेम गीत, फूलों की माला में पिरोती है।

sin dejar tan tan a mí no hay para mí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí.

आवाज़।

किया है, रहा है,

क्या करें, 15

ਹੈ ਤੁਸੀਂ?

सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकल्चर मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद

Amen.

तो वेंगो अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकलने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाल लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने

सम्मान एग्रीकोलर मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद

0: साथ में प्रभु के साथ में
1: एक तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा
0: हृदय घाटी से घूसते हैं कुछ मोल लग रही
1: तेरा जवाब नहीं
0: जिसे है मोहब्बत का राज
1: प्यार का राज
0: बुझता है छाया जी हृदय घाटी से
1: हृदय

किया था, बुलाया उनको, सुना तो आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को। बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झंकार खुदा कर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों

पिता के रूप में देखा। निशांत स्वामी मंथन अपने बराए मेरी जंग सुर संगम के तो वे नायक थे, परंतु मूलतः गिरी सच्चे साहित्यकार और रंगकर्मी थे। गिरीश कर्नाड का जन्म 19 मई 1938 को महाराष्ट्र के पर्यटन स्थल माथेरान में हुआ था, मगर उनकी माँ कृष्णाबाई और पिता डॉक्टर गुणवंत कर्नाड चंडीगढ़ से अर्थात कर्नाटक के रहने वाले थे। प्राथमिक शिक्षा मराठी में हुई। आगे जब वो परिवार कर्नाटक के तिरसी गांव में रहने लगा, तब गिरीश नाटक मंडलियों के संपर्क में आए। वहाँ के लोकनाट्य यक्षगान के तो वे जबरदस्त प्रशंसक थे। गिरीश जब 14 बरस के थे तब उनका परिवार धारवाड़ में आ बसा, जहाँ उन्होंने बीए तक की पढ़ाई पूरी की और फिर वे इंग्लैंड चले गए। ऑक्सफोर्ड के मैगडलिन शहर में रहकर उन्होंने फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स विषयों को लेकर एमए की डिग्री हासिल की।

करना आज चेन्नई में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के लिए काम करने लगे। अब भी नाटकों और लोक कलाओं के प्रति उनका आकर्षण कम नहीं हुआ था। चेन्नई में रहते हुए गिरीश कर्नाड द मद्रास प्लेयर्स नामक नाटक मंडली से जुड़ गए। विदेश जाने से पहले ही 1961 में गिरीश कर्नाड ने जब लिखना शुरू किया था, ये वो समय था जब कन्नड़ साहित्य पर यूरोपीय साहित्य की छाप देखने को मिलती थी। कमोबेश सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य की स्थिति यही थी। श्री राजगोपालाचारी द्वारा रचित महाभारत का संस्करण गिरीश कर्नाड ने पढ़ा और उन्होंने अनुभव किया कि महाभारत के पात्र उनके मस्तिष्क में विचरण कर रहे हैं और उन पात्रों के संवाद कानों में गूंज रहे हैं। आगे एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि मैं तो मात्र लेखनी हूँ, एक एक कर सभी पात्र मेरे कानों में बोलते गए और मैं लिखता गया, नाटक तैयार हुआ गया। पांडवों के पूर्वज ययाति पर केंद्रित ये नाटक बहुत सफल हुआ और अन्य भाषाओं में इसके अनुवाद भी हुए। 1964 में गिरीश कर्नाड ने अपना अगला नाटक लिखा तुगलक। 14वीं सदी के दिल्ली के इस सुल्तान की कहानी के माध्यम से तत्कालीन प्रशासन की महत्वाकांक्षी आदर्शवाद का बुलबुला बड़ी सहजता से दर्शाया गया था इस नाटक में। गिरीश कर्नाड को एक नजरिया मिल गया था, कहानी के स्रोत इतिहास या पुराणों से लेना और समकालीन विषयों तथा आधुनिक मानव की अस्तित्व के लिए चल रही लड़ाई के साथ उसे जोड़ देना। मात्र 26 वर्ष की आयु में गिरीश कर्नाड एक उदीयमान प्रतिभाशाली लेखक के रूप में स्थापित हो चुके थे। सन 1971 गिरीश कर्नाड के कला जीवन की दो महत्वपूर्ण घटनाएं, एक और 11वीं सदी के संस्कृत ग्रंथ कथा सरित सागर से ली गई एक कहानी पर आधारित नाटक हैवदन का निर्माण और दूसरी ओर एस एल भैरप्पा के उपन्यास पर बनी फिल्म वंश वृक्ष का निर्देशन। लोकनाट्य यक्षगान के सांचे में ढलकर नाटक हैवदन का सफल मंचन हुआ और खूब सराहना मिली। ये नाटक जर्मन भाषा में भी अनुवादित हुआ। उसका निर्देशन किया जानी मानी निर्देशिका विजया मेहता ने। यूं तो 1970 में ही गिरीश कर्नाड का पदार्पण हो चुका था फिल्म संस्कार के पटकथा लेखक के रूप में। इस फिल्म को राष्ट्रपति के स्वर्ण कमल से सम्मानित किया गया है। निर्देशक के रूप में गिरीश कर्नाड की पहली फिल्म थी वंश वृक्ष, जिसके लिए राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वोत्कृष्ट निर्देशक का पुरस्कार उन्होंने साझा किया बी.वी. कारंत के साथ। आगे कई कन्नड़ फिल्मों का उन्होंने निर्देशन किया। जहां तक हिंदी फिल्मों की बात है, 1977 में गिरीश कर्नाड ने जिस फिल्म का निर्देशन किया वो फिल्म थी गोधूली और 1984 में शशि कपूर निर्मित फिल्म

साक्षात गिरीश शर्मा के नाम का डंका अभिनय के क्षेत्र में ही बजने लगा। तब्बलियु नीनदे मगनी, ओंदनंदु कलगल्ली, चेलुगी, काडू, कोन्नूरु हेगदित्ते, ये हैं कुछ प्रमुख कन्नड़ फिल्मों के नाम जिनमें गिरीश कर्नाड ने अभिनय किया है। उनके अभिनय से सजी हिंदी फिल्मों की तो एक लंबी फहरिस्त है। जादू का शंख, निशान, मंथन, स्वामी, जीवन मुख, संपर्क, रत्नदी, बेकसूर, आशा, मनपसंद, अपने बराए, क्षमा, तेरी कसम, आनंद भैरवी, एक बार चले आओ, तराना, जमाना, मेरी जंग, सुरसंगम, सूत्रधार, आकर्षण, मिल गई मंजिल मुझे, चैतन्य, ब्रह्म, अंतर्नाद, गुना, प्राणदाता, आतंक, चाइना गेट, AK-47, पुकार, इकबाल, जोर, 8x10 तस्वीर, आशाएं, लाइफ गोज ऑन, एक था टाइगर, सिवाय, स्टॉक इन्वेस्टर और टाइगर जिंदा है। फिल्म सुरसंगम जो तेलुगु में शंकरा भरणम के नाम से बनी थी, इसके नायक पंडित शिवशंकर शास्त्री की भूमिका में थे गिरीश कर्नाड। वो जानदार शानदार अभिनय कैसे भुलाया

0: तेलुगु और तमिल फिल्मों में अभिनय करने वाले गिरीश कर्नाड एक मराठी फिल्म में भी मुख्य सहायक अभिनेता थे। वो मराठी फिल्म थी उम्बरठा।
1: ठीक है, संगमवाड़ी महिला आश्रम सुप्रिंटेंडेंट पोस्ट। अच्छा सर, हेच जादो क्या तो रचता था
2: सुभाष माला तुमसे मत हवा
1: मत क्या ऐसा क्या कहना सच्चे नहीं मुंह करवाई सर
2: का का सच्चे नहीं मुंह करवाई सर
1: मतलब सच्चे आहे मुंह करा ना बेड़ी ऐसी सर
2: सुभाष को ठट्टा नहीं करते माला खरच के काम घेर सर
1: एका तुला इथे अस्वस्थ वाटते या घरात तुझा जोपत काही काम नाही म्हणून तू बुद्धनच पण यावर तोड काय घर सोडून कुठेतरी आरगावी जाऊन भुताचा तर म्हणा आणि

और मार्ग प्रशस्त हुआ दूरदर्शन का, नई नई श्रृंखलाएं बनने लगी। अंग्रेजी के मशहूर साहित्यकार आर के नारायण की कहानियों पर आधारित हिंदी सीरियल बना मालगुड़ी डे, जिसका नायक था एक नन्हा सा नटखट बालक स्वामी। इस श्रृंखला में स्वामी के पिता की भूमिका की थी गिरीश करनाल ने।

अक्सर से लेकर 1990 तक गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित नागमंडल, अग्निमत्तुमालई और कालेदंड, इन नाटकों को अनुवादित रूप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपार सफलता मिली। भाषा साहित्य की सेवा के लिए गिरीश कर्नाड को 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1974 में पद्मश्री पुरस्कार, 1992 में पद्म भूषण पुरस्कार से गौरवान्वित किया गया। 1992 में ही उन्हें कन्नड़ साहित्य परिषद का पुरस्कार प्रदान किया गया। 1994 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। 1998 में कालिदास सम्मान तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से गिरीश कर्नाड को सम्मानित किया गया। फिल्मों में उनके योगदान को अन्य पुरस्कारों से प्रतिष्ठा मिली। 1971 में बेस्ट डायरेक्टर फिल्म वंश वृक्ष के लिए, 1977 में बेस्ट फीचर फिल्म इन कन्नड़ा डब्ल्यू नीलदे मगने के लिए फिल्म भूमिका की पटकथा के लिए, 1978 में बेस्ट स्क्रीन प्ले का पुरस्कार उन्होंने साझा किया श्याम बेनेगल और सत्यदेव दुबे के साथ।

इस फिल्म के लिए बेस्ट फीचर फिल्म का उन्हें पुरस्कार मिला 1978 में। कन्नड़ भाषा के एक संत कवि कनक पुरंदर पर उन्होंने एक वृत्त चित्र का निर्माण किया।

carnal, pues miré,

हालांकि प्यार सिर्फ प्राथमिक नाम नहीं है,

हो जाता है तुम्हारे साथ जैसे। न कोई बड़े सपने, न दीवानगी, न झूठा रोमांस। तुम्हारा प्यार किसी फिल्मी डायलॉग से शुरू नहीं होता, वो तो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। पर हाँ, मुझे अच्छा लगता है

है तब। हाँ, छोर कर चले जाना तो आसान है, लेकिन थामे रहना जैसे तुमने थामा मुझे। सैकड़ों को प्यार करने की जरूरत नहीं होती। तुमने तो कहा था बस एक को सौ तरीके से प्यार किया जाए, वही काफी है।

है। वो थोड़ा सा स्पर्श, वो थोड़ी सी करीबी, वहाँ एक आवेग नहीं, पल भर की शांति जवान जैसी। उसका वो

Christ is intervening. Ikru bandere. Upishe, nirmahate, germahate, vishvate, karan vayuhe yidu. Uska prem sardiyon mein subah ki suraj ki garmi jaisa hai. Uska chehra garmi ki tapan se dur ek thandak ka ehsaas deta hai. Kabhi kabhi ye prem बसंत में हवा की हल्की सी सरसराहट जैसा लगता है